मन का सुत लोभ लोभ है जे बस सुत कूड़ अखि सुत वेखना पर त्रै पर तनु कन्नी सुत कन पैले तुबारी काय नानक हंसाया।

0: आज्ञेचे श्री दरबार साहब अमृतसरतो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे सी। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी पंजाबी सेवा च हुण तुहाडी नजर कर रहे हैं सूफियाना कलाम।
1: समात फरमाओ सूफियाना रंग, समात फरमाओ सूफियाना रंग।

शैतान न

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोवॅट से ते खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बोस ऑन ईयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कढी वठंदा आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशा वक़्त कोराम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदा, पोइ प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सुञाण तोखे ख़बर कहिड़ी, ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में पेश कयूं वेंदियूं। हींअर असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कोराम साहब खे ॿुधूं।

मानव साहब जिन जी सदाबहार आवाज में कलाम दिनों ये आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई और पेश है तसरो भारत ए यूरोपियन यूनियन पैं वचनबद्धता के बीहर पुख्त है बरकरार रहंदड़ पानी की बेड़न के रिसाइकलिंग करण लाए कानून के वधिक मजबूत किया वेंदो ए बिन्हीं धुरन अकेलो सहर कहो है इन डस में भारतीय बेड़न के रिसाइकल करण की सहूलियत के बेहतर किया है उनमें तरक्की हासिल कई वही है यह कार्रवाई यूरोपियन यूनियन शिप रिसाइकलिंग रेगुलेशन एक्ट तहत कई वही है। भारत जो मकसद है इंदड़ डहाके दौरान 16,000 लगभग बेड़न के रिसाइकल करण में बेड़न के अड़न ए शिप रिसाइकलिंग खेत्र के 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की माली इमदाद पिण डी वी बुधरणी यो बयान शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल डनो बंदरगाह शिपिंग ए वाटरवेज के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल यूरोपियन कमिश्नर माहौल पानी रिसाइलेंस ए कॉम्पिटेटिव सर्कुलर इकोनॉमी के यूरोपियन कमिश्नर जेसिका रोसवाल्ड बिन्हीं धुरन हलंदड़ ऑडिट ए कंप्लायंस से जायजो वरतो भारतीय शिप रिसाइकलिंग यार्ड से जेके यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तहत मान्यता हासिल कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के मान्यता लाए 30 का भी भारतीय शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स अप्लाई कर चुका है। 36 यार्ड इन वक्त कंप्लायंस ए अप्रूवल प्रोसेस तहत हैं। 10 अग्नि ये कंप्लायंस पूरा कर चुका है हाँ यूरोपियन यूनियन शिप रिसाइकलिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क तहत उनमें शुमार थे अप्लाई करने लायक थी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सरबराह तहत सर्बानंद सोनोवाल भारत हाल में जो मुख्य शिप रिसाइकलिंग मुल्क थी कर उभरी रहा है एंडरस में सलामत माहौल के फायदे में एक जिम्मेवार शिप रिसाइकलिंग जो आलमी मरकज से करे उभरी रहा है। वापन डेवलपमेंट ते ताजी यूएन कॉन्फ्रेंस के मुताबिक आलमी शिप रिसाइकलिंग में भारत जो हिस्सो साल 2024 में 3.1% साल 2025 में 35.4% थे।

वर्ल्ड कप 2025 दौरान ॿ ढाई नव नव मिलियन ग्रॉस टन ॿेड़नि खे रिसाइकल कयो। इन तरह 2024 में 1.86 मिलियन ग्रॉस टन रिसाइकल कयो। भारतीय सरकार फ़हरिस्त ते भारतीय शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स खे हिकु पारदर्शी कार्रवाई सां ऑडिट इंस्पेक्शन ऐं रेगुलेटरी कंप्लायंस ज़रिए मञता ॾेई रही आहे। बयान चुकारा त भारतीय सहूलियतुनि पंहिंजे बुनियादी ढांचे खे ऐं ऑपरेशन प्रैक्टिसिस खे जदीद करण में चङी सीड़प कई आहे। हिननि खे आर्मी दर्जनि ते आंदो आहे, तंहिं मां पतो थो पए कि मुल्क हिकु बरक़रार रहंदड़ सामूंडी तरक़ियाती ऐं ज़िमेवार रिसाइकलिंग ॾांहुं वधी रहियो आहे। भारत जे लंबी दूरी जे दूरांदेशी खे रोशनी में आणंदे श्री सोनोवाल चयो त आर्मी मञता मिलियल भारतीय रिसाइकलिंग सहूलियतुनि खे वधाइण जे लाइ आर्मी सर्कुलर इकोनॉमी घणो योगदान ॾींदी। माहौल जे फ़ाइदे में रिसाइकलिंग आदतुनि खे अॻिते वधाईंदी, वधाइण सां रोज़गार ऐं सामूंडी सस्टेनेबिलिटी पिण मज़बूत थींदी। कमिश्नर रोसवाल पिण समय थियल वाधारे जी आजियां कई ऐं हिकु गॾियल कम कंदड़ ग्रुप जी आछा रखी आहे। तंहिंमें माहौल वज़ारत जा एवज़ी ऐं ॿियनि वास्तेदार वज़ारतनि जा एवज़ी रहंदा, जेके हिन कार्रवाई जे ईंदड़ फेस में तावन ऐं हिमायत ॾींदा। कमिश्नर इहो पिण ज़ोर ॾिनो त कंप्लायंस जे उचनि दर्जनि खे बरक़रार रखण लाइ बिना ऐलान जे इंस्पेक्शन थियणु घुर्जनि, पारदर्शी ऐं ज़िमेवारी सिस्टम हुअणु घुर्जे। इहो पिण ध्यानु चुकारा त इन ॾस में यूरोपियन यूनियन मेंबर मुल्कनि सां ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, जेसीं को आख़िरी फ़ैसिलो खयो वञे। इन बहसु बहस में भारत ऐं यूरोपियन यूनियन मंझि हिकमत अमली भाईवारी ते ध्यानु ॾिनो वियो, त जीअं बरक़रार रहंदड़ सामूंडी आदतुनि खे अॻिते वधायो वञे। तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम सॼे तोखे ख़बर कहिड़ी।

सिंध में वण वढ़ण ऐं इन जे काठ विकड़ो करणु हिकु आम रवाज़ी ॻाल्हि आहे। ताज़ा आयल हिकु रिपोर्ट में ॿुधायो त कोहिस्तान में वणनि जी वाढी ते छापो हयो, काठ सां भरियल 14 गाॾियूं हथ कयूं वयूं। मोरियाबाद ऐं भरपासे जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गैर क़ानूनी तौर वण वढे काठ चोरी करण जी कार्रवाई हिकु आम रवाज़ी थी वई आहे। इतला मिलण ते पुलिस कार्रवाई करे काठ सां भरियल 14 गाॾियूं हासिल करे पंहिंजे कब्ज़े में वरितियूं। पुलिस कार्रवाई कयल हथ गाॾियूं जेके आहिनि काठ वारियूं गाॾियूं जेके आहिनि से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट खे सौंपे रखियूं। हाणे सुवाल इहो थो थिए त 14 गाॾियुनि जेतिरा वण कीअं कटिया आहिनि ऐं इन खे कंहिं मोकल ॾिनी त एतिरी वॾी तादाद में वणनि खे वढियनि। अॻिते पिणु लिखियलु आहे की कोहिस्तान सिंध जे गरम तरीन इलाइक़नि मां हिकु आहे जिते वण न जे बराबरि आहिनि। जिते वण पोखणु इन्हनि जी सार संभालण वधीक लाज़मी आहे, पर हिते उबतर थी रहिया वणनि खे कटियो पियो वञे। हिते अहिड़ियूं माफ़ियाज़ आहिनि जेके वणनि खे अहमियत ॾियण लाइ तयारु कोन आहिनि ऐं जॾहिं चाहिनि जिते चाहिनि सभिनि जी तादाद में वण कढे काठ जो विकिरो थी कनि, जंहिंखे रोकण जी सख़्त ज़रूरत आहे। सिंध एक्सप्रेस में शायदि थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया जंहिंजो टाइटल हो वणनि खां ख़ाली थींदड़ कोहिस्तान।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उजरा हि असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रहा है वरी तवा सा गजानी थी सुभाने सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े चाहेंगे तेसी तीन दिन का इजाजत सभी का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सुनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है।

समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है दीपक हरी गुड मॉर्निंग का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का। कहते हैं दूसरों के लिए जीने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और दोस्तों कभी आपने अपने अलावा दूसरों के लिए जीकर देखिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। दूसरों के काम आना, मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहना, और अपने दोस्तों के साथ खास तौर पर उनके साथ विश्वास का रिश्ता कायम करना तो बहुत बेहद जरूरी है। इसीलिए दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना, खुश होकर जीना ही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है।

सुहाने हैं और टोटल दीवाने हैं। जी हाँ, रिश्ते की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये खुशी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है और ये खूबसूरत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सभी हालातों में आपके साथ यानी दुख सुख में हमेशा साथ में हो, और सारी बातें हमारे रिश्तों में चमक ला सकती हैं अगर हम साथ में रहते हों तो, और वो भी मिलजुल कर।

आपको सुन रहे हैं गीतो वेरी गुड मॉर्निंग सिमरन कौर के साथ। और बात कर रहे हैं हम रिश्तों की, कुछ कुछ मीठे खट्टी और प्यारे प्यारे रिश्तों की। रिश्ता एक खूबसूरत शब्द है, एक ऐसा एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश समर्पित होता है। और रिश्ता खुशी से धीरे धीरे बढ़ता है और एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है।

और दोस्तों, जब इस तरह की खुशियों को बटोर कर अपने और दूसरों के जीवन को हम संवारते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आपका कोई साथ देता है तो उससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती।

और बिना मोल के मिले खुशी कितनी अनमोल होती है, और इसका एहसास बहुत अच्छा लगता है, और परेशानियां हमारी जीवन से कम होती चली जाती हैं।

दोस्तों इसलिए तो कहते हैं कि रिश्तों की हमेशा चमक को संभाल कर रखिए, क्योंकि इस तरह आपके रिश्तों में चमक तो बरकरार रहेगी और विश्वास और प्यार हमेशा रहेगा।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जी हाँ सिमरन कौर के साथ, और आपसे फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, रेटिंग वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, टीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्य के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: क्षेत्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इससे विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल

0: इन हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश।

0: सेक्स में 579 अंकों का रुझान, लोक सत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिन्दुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सुनाए ताकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two Prime Ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saqlan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the Economic Security Partnership

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सारनाथ श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिले मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनकी ज़ेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहुल-कायल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दो तरफा खसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इकतसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरक अहद का इरादा किया है। इकतसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरक ऐलानिये में कहा गया है कि इकतसादी सिक्योरिटी साझेदारी, बाहमी एतमाद, मुश्तरक

0: स्वामी हवाई अड्डों पर इबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का स्वर गंगा। गायन कलाकार है अपूर्वा तिवारी और राग है मियां की तोड़ी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। गायन कलाकार थी अपूर्वा तिवारी और राग था मियां की तोड़ी।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर SZ मलिक।
1: गांधी जी दूरदर्शी थे। उन्होंने आज से दशकों पहले भांप लिया था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में भी रेखांकित किया था। भारत का कल्याण उनके गांव में है, अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। गांधी जी का ग्रामीण विकास का मॉडल केवल आर्थिक नहीं था बल्कि वह नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक भी था। उन्होंने इसे ग्राम स्वराज का नाम दिया था। गांधी जी का मानना था कि हर गांव को अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होना चाहिए। उनके ग्राम स्वराज का अर्थ था कि गांव अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा और आवास के लिए किसी दूसरों का सहारा न ले, दूसरों पर निर्भर न हो। गांधी जी चाहते थे कि हर गांव अपने आप में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाई हो। सफाई और स्वास्थ्य। गांधी जी के अनुसार विकास की पहली सीढ़ी सफाई है। वे चाहते थे कि गांव की गलियां साफ हों और हर घर में स्वच्छता का वास हो। वहीं उन्होंने पंचायती राज को भी बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि गांव के फैसले गांव के ही लोग लें, न कि दूर बैठे किसी दफ्तर के बाबू। ग्राम स्वराज में एक सबसे बड़ी योजना गांधी जी की औद्योगिक प्रगति। मशीनें बनाम मनुष्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि गांधी जी मशीनों के खिलाफ थे, लेकिन ये सच नहीं है। वे केवल उन मशीनों के खिलाफ थे जो इंसान का काम छीनकर उसे बेरोजगार बना देती थी। बापू की मुख्य योजना ग्राम स्वराज और ग्रामीण स्वयं रोजगार हो, इसलिए बापू का कुटीर उद्योग पर अधिक बल था। कुटीर उद्योग कॉलेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी का कहना था कि हमें ढेर सारा उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन चाहिए, यानी कुटीर उद्योग द्वारा ग्रामीणों को स्वयं रोजगार बनाया जा सके। इस योजना के तहत गांधी जी ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए स्वयं एक चरखा बनवाकर खुद ही उसका इस्तेमाल शुरू किया, जिसका प्रभाव ग्रामीणों में जबरदस्त देखने को मिला। चरखा केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह स्वावलंबन का प्रतीक था। वे चाहते थे कि किसान खेती के खाली समय में कटाई बुनाई करें ताकि उनकी आय बढ़े। जिस युग में गांधी जी ने कुटीर उद्योग का विचार ग्राम स्वराज में रखा, उस समय कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बापू ने चरखा का आविष्कार कर ग्रामीणों को स्वयं रोजगार के लिए जागरूक करने की एक प्रतिभाशाली योजना तैयार की, ताकि किसान को घर बैठे घर में ही आय का स्रोत पैदा हो और किसान ग्रामीण खुशहाल बने व किसी पर आश्रित न रहे। इसका प्रमाण हमें 26 जुलाई

0: 1942 के एक पत्रिका के अंक में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र हो जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे, बल्कि उसमें परस्पर सहयोग की भावना हो। हर गांव की पहली जरूरत होगी अपने खाने के लिए फसलें, आमदनी के लिए कपास का उगाना। कपास जो हमारे भारत का सबसे बेहतरीन खेती मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी ने कपास को तरजीह दी थी और शुरुआत ही कपास से धागा बनाने का काम किया और फिर वो चरखा पर सूत काटने लगे। गांधी जी के ग्रामीण विकास के मुख्य स्तंभ ये तीन बातों पर टिके थे। पहला, आत्मनिर्भर भारत। गांव अपनी जरूरतों का सामान जैसे अनाज, कपड़ा और बुनियादी चीजें खुद पैदा करे। दूसरा, मजदूर का सम्मान। हर व्यक्ति शारीरिक मेहनत करे, जिसे गांधी जी ब्रेड लेबर, रोटी के लिए मेहनत कश, परिश्रमिक कहते थे। और तीसरा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। सत्ता और संसाधनों का केंद्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर जैसे बड़े शहर, महानगर न हो, बल्कि पंचायत हो। ये गांधी जी का मूल मंत्र था। ग्राम स्वराज को अस्तित्व मिलाने के बाद गांधी जी का मानना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रगति खोखली रहेगी। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो असल में हम गांधी जी के इसी ग्राम स्वराज के सपने को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। औद्योगिकीकरण और मशीनों पर गांधी जी के विचार। गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे मशीनवाद के विरोधी थे। वे उस व्यवस्था के खिलाफ थे जहां मशीनें चंद पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती हैं और लाखों मजदूर को सड़कों पर लाकर खड़ा कर देती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 27 अक्टूबर 1924 के नवजीवन अखबार में मिलता है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सभी मशीनों के खिलाफ हैं, तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं मशीनों का नहीं बल्कि मशीनों के प्रति इस पागलपन का विरोधी हूँ। आज जो मशीनीकरण चल रहा है, वो मेहनत की बचत के नाम पर हो रहा है। लोग मजदूर की बचत तब तक करते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के भूखे न मरने लगे। मैं समय और मेहनत की बचत मानव जाति के एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए चाहता हूँ। उसी बातचीत में उन्होंने आगे ये कहा था, मैं तो उस मशीन का स्वागत करूँगा जो इंसान के काम को आसान बनाए, जैसे सिलाई मशीन, किसानों के लिए क्रेशर मशीन और धान मिल, कपड़ा बुनने के लिए पावर लूम, सूत काटने के लिए जो मशीनों का उपयोग किया गया, वो बेहतरीन आविष्कार है। गांधी जी का सीधा सिद्धांत था, बड़े पैमाने पे उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन होना चाहिए। वे चाहते थे कि उत्पादन के साधन आम लोग के हाथों में हो। गांधी जी ने ग्रामीण विकास और औद्योगिक संतुलन को साधने के लिए दो अभूतपूर्व उपकरण दिए हैं। पहला, खादी व कुटीर उद्योग और दूसरा, न्यायसिता का सिद्धांत। गांधी जी के लिए चरखा सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि वह भारत के आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। यंग इंडिया पत्रिका 1921 में उन्होंने लिखा था कि चरखा भारत के गरीबी का अचूक इलाज है। कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे घरेलू उद्योग के जरिए वे गांव के हर हाथ को काम देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर कृषि के साथ साथ ग्रामीण लोग हस्तशिल्प, बुनाई और चर्म शिल्प जैसे कार्यों से जुड़ेंगे, तो शहरों की तरफ पलायन रुक जाएगा। वहीं दूसरी ओर बड़े उद्योगों के संदर्भ में उन्होंने ट्रस्टीशिप यानी न्यायसिता का सिद्धांत दिया था। गांधी जी का कहना था कि अमीर लोग उनकी संपत्ति के मालिक नहीं, बल्कि समाज की ओर से उनके ट्रस्टी या संरक्षक हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा था, आप अपनी जरूरत भर धन का उपयोग करें, लेकिन जो अतिरिक्त धन या संपत्ति है, उसे समाज की धरोहर समझें और उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करें। यह विचार आज के कॉरपोरेट जगत में CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में दिखाई देता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार, आलेख एवं स्वर एस जेड मलिक।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: में आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

शिकायत करता हूं कि अकलों दिलों निगाह सब उसके हुजूर बाद अब अकलों दिलों निगाह सब उसके हुजूर बाद अब हरफों सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। अकलो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाद अब हरफों सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। शेर समाप्त करें कि धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरवे कायनात की। समाप्त कीजिए शेर के धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरवे कायनात की। अर्ज करता हूं कि तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीने कायनात की। फिर समाप्त कीजिए शेर के तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीने कायनात की। शेर किया है कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नजर उठी बज़्म सजी हयात की। फिर शेर अर्ज करता हूं कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नजर उठी बज़्म सजी हयात की। आखिरी शेर हमदे पाक का है कि चाहे नजर न आ सके चाहे खबर न हो सके, चाहे नजर न आ सके चाहे खबर न हो सके, और भी वजह है कोई गर्दिश कायनात की। चाहे नजर न आ सके चाहे खबर न हो सके, और भी है वजह कोई गर्दिश कायनात की। बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी उसने जात की, मेरी नजर की राह में गर्द है मुमकिनात की। सामईन इकराम, नात पाक से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप दरूद पाक पढ़ें। मतलब करता हूं कि जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शय ताजे सुल्तानी में है। समा कीजिए कि जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शय ताजे सुल्तानी में है। उसने मतलब समाप्त करें कि कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, दो जहां की कामयाबी तेरी दरबानी में है। कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, दो जहां की कामयाबी तेरी दरबानी में है। एक पतला और समाप्त करें हजरात के, अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हर्फ़े कुरानी में है, अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हर्फ़े कुरानी में है, सरनगूं थी कल भी दुनिया अब भी हैरानी में है। फिर समाप्त करें कि अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हर्फ़े कुरानी में है, सरनगूं थी कल भी दुनिया अब भी हैरानी में है। लातो उज्जा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, शेर देखें हजरात के, लातो उज्जा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, तेरी तकबीरें मुसलसल बज़्मे इमकानी में है। लातो उज्जा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, तेरी तकबीरें मुसलसल बज़्मे इमकानी में है। और खुशनसीबी में तेरे अहबाब का आसानी नहीं, शेर समाप्त फरमाएं कि खुशनसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, जिनकी आंखों के लिए जलवा फरावानी में है। खुशनसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, जिनकी आंखों के लिए जलवा फरावानी में है। और आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, शेर समाप्त करें कि आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, अजमत आदम खिलत की पाक दामानी में है। आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, अजमत आदम खिलत की पाक दामानी में है। और जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, शेर समाप्त फरमाए हजरात के, जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, वो अदाए फखरा का तेरी सुल्तानी में है। जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर।

0: वो अदाए फक्र आका तेरी सुल्तानी में है। और शेर देखें कि असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, मंजिले गुम कारवाने फिक्र हैरानी में है। असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, मंजिले गुम कारवाने फिक्र हैरानी में है। और मेरी आक मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, दिल अगरचे मुबतला जज्बों की नादानी में है। मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, दिल अगरचे मुबतला जज्बों की नादानी में है, जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शह ताजे सुल्तानी में है। वक्त समाप्त फरमाए हजरात के, याद करके जो उसे आंखों से बहता है जमील, याद करके जो उसे आंखों से बहता है जमील, कैसी तासीर शिफा उस आंख के पानी में है। याद करके जो उसे आंखों से बहता है जमील, कैसी तासीर शिफा उस आंख के पानी में है, जलवा फरमान नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शह ताजे सुल्तानी में है। हजरत एक नाते पाक और समाज समय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलाज करता हूँ कि अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, तेरी सुन्नत से है, कुरान से है, इस्लाम से है। अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, तेरी सुन्नत से है, कुरान से है, इस्लाम से है। और एक मतलब और समाप्त करें कि रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, आज सीनों में उजाला तेरे पैगाम से है। फिर समाप्त करें हजरात के, रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, आज सीनों में उजाला तेरे पैगाम से है। और इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको, समाज फरमाए के इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको, नूर अफशानी मुसलसल जो दरोबाम से है। इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको, नूर अफशानी मुसलसल जो दरोबाम से है। शेर समाज करें कि तेरा सदका है ये दुनिया ये मताए हसी, तेरा सदका है ये दुनिया ये मताए हसी, और ये तस्खीर फलक भी तेरे इकराम से है। तेरा सदका है ये दुनिया ये मताए हसी, और ये तस्खीर फलक भी तेरे इकराम से है। शे देखें कि उसको दौलत की तलब है न शहनशाही की, उसको दौलत की तलब है न शहनशाही की, जो तेरे कदमों से वाबस्ता है आराम से है। उसको दौलत की तलब है न शहनशाही की, जो तेरे कदमों से वाबस्ता है आराम से है। राह दुश्वार है लेकिन तेरी सुन्नत के तुफैल, इस्तकामत की तवक्को दिले नाकाम से है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुबह का ही, हम दोबारे ताला और नाते रसूल पेश कर रहे थे डॉक्टर जमील मानवी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
2: अब बात करते हैं सुभद्रा आज कार्यक्रम आज सवेरे में आज के दिन की विशेषता के बारे में।
3: यस,
2: तो आज 3 जुलाई है, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो प्लास्टिक एक तरह से मनुष्य के लिए सुविधा का कारण है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी के लिए घोर संकट बन के उभरा है।
3: तो
2: ये समय की वर्तमान समय की मांग है कि प्लास्टिक के बैग्स को जितना हो सके से नो टू प्लास्टिक। तो श्रोताओं, प्लास्टिक का जैसा कि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि कम से कम यूज करें और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में अपना अपेक्षित योगदान दें। अगर हम बात करें 1989 के बरस की, तो कोलकाता में विद्यासागर सेतु का निर्माण आज ही की तारीख को शुरू हुआ था, और 2004 में मारिया शारोपोवा ने विंबलडन महिला एकल का खिताब भी आज ही की तारीख को अपने नाम किया।

इसके अगले बर्ष यानी कि वर्ष 2005 में महेश भूपति और मैरी पियर्स ने भी विंबलडन टेनिस का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता था। श्रोताओं, समय है उन विशेष व्यक्तित्वों को याद करने का जो आज के दिन दुनिया में आए, जिन्होंने आज के दिन इस जगत को अलविदा कह दिया या आज जिनका जन्मदिन है। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं हंसा मेहता की, आज उनकी जयंती है। समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में वे प्रसिद्ध रही। इनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के प्रमुख चिकित्सकों में से एक गांधी जी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता के साथ हुआ। उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आज ही कैप्टन मनोज पांडे ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के इस वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी।

कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दिलेरी के साथ कई हमले किए। दुश्मन के एक के बाद एक ठिकानों को उन्होंने अपने कई हमलों से निस्तनाबूद किया। नतीजा युद्ध का रहा कि भारत कारगिल पर विजय पताका लहराने में कामयाब रहा। कारगिल युद्ध के दौरान मनोज पांडे 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन में कैप्टन थे। कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद वो दुश्मन के बंकर में घुसे। उन्होंने अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए अगले 22 दिन तक दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम किया। इस दौरान कैप्टन मनोज पांडे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। 3 जुलाई 1999 को वो 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर गए। उन्हें सरकार ने परमवीर चक्र से भी सम्मान

0: तो जैसा कि आप पार्श्व में बज रहे कवि प्रदीप के इस गीत को सुन रहे हैं कि कैप्टन मनोज पांडे जैसे कितने ही ना जाने इस देश के वीर सपूत हैं जिन्होंने हमारे लिए, हम देशवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके इस सम्मान को बिल्कुल सम्मान दें।
1: Yes, God bless them all.
0: श्रोताओं, आज अभिनेता राजकुमार की भी पुण्यतिथि है। राजकुमार ने भले ही कम फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। उन पर फिल्माया गया फिल्म नील कमल का ये गीत आज भी लोगों की जबान पर है।

राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। राजकुमार ने सौदागर, मदर इंडिया, पैगाम, दिल एक मंदिर, वक्त, लाल पत्थर, तिरंगा जैसी हिट फिल्में की हैं। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। आइए सुनते हैं उन पर ही फिल्माई गई एक फिल्म सौदागर से ये गीत।

0: राजकुमार पर फिल्माए गए ये गाने तो आपने सुने ही, तो क्यों ना तिरंगा फिल्म से उनका ये संवाद भी सुना जाए आज।
1: हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं, हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद।
2: तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो।
1: हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं।
2: सूर्यदेव सिंह,
1: ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असदुल्ला। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब। सनाए ताकाइची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज उहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहनुमा आला मुस्तफा खामनेई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए ताकाइची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तज़किरा किया गया है। भारत और जापान ने दो तरफा खसूसी क्लियरी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरक ऐलानी में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद मुश्तरक अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ये ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बैरुल्काही नीज मुख्तलिफ खितों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामी इकदाम के दरमियान तालमेल से तफहन को इक्तसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर, अहम मादनियात, इंफॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। एक बयान में इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के एहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी के एक और लीडर हिदमर्ता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। चुनाव कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों को हिदायत दी गई है कि पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के रहबरे आला मुस्तफा खामनेई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की है कि सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया कि अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काटिस की जानिब से यह कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुस्तफा खामनेई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क्यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4-9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला آیت اللہ سید علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا آج کولکتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازیہ میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دہلی میں پنچایتی راج کی ریاستی وزراء کی ایک قومی ورکشاپ انعقاد کرے گی، تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادل خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج کے محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ ورکشاپ کے دوران بات چیت میں وزارت خزانہ کے اخراجات سے متعلق محکمے کی جانب سے جاری 16ویں مالیاتی کمیشن کے دیہی بلدیاتی اداروں کے گرانٹس کے سلسلے میں رہنما خطوط پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 57 دن تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں۔ یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا منمن اور بلتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا۔ یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے۔ تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکدن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا۔ اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی۔ 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے باقی حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، کوکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں مطلع اور آلود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریلیا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگلوڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گالے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے ٹیکاچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی اس سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ स्पेन ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अकबाले जर्री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: अल्लाह ताला के नेकोकार बंदे अपने गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ करते हैं। अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। माफ करना बदला लेने से बेहतर और अफजल है। दीनवी मामलात में इंतकाम गिरी का जज्बा इंसान के दिल में पाए जाने वाले हसद का नतीजा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशी है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है वो बदला नहीं लेता। दूसरों पर रहम करने वालों, एहसान करने वालों और अफ़ दरगुज़र से काम लेने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। हजरत अली मुर्तजा करम अल्लाह वजूह का मुबारक कौल है, शरारत से काम ना लो और इंतकाम लेने की कोशिश ना करो। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, इंतकाम लेने की ताकत रखने के बावजूद इंतकाम न लेना अफजल तरीन इबादत है। हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक शख्स ने शिकायत की कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया और साथ ही उसको बुरा भला कहा। हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने उसे रोक कर फरमाया, जा अपना हाल इज़ार अपने अल्लाह के सामने बयान कर, यह इंतकाम लेने से बेहतर है। फारसी जुबान का मशहूर मकूला है, दरफ लज्जत अस्त के दर इंतकाम नीस्त, माफ करने में वो मजा है जो बदला लेने में नहीं। मशहूर लबनानी मुफक्किर और अदीब खलील जिब्रान का कौल है, उन लोगों के दिल के जख्म हमेशा ताजा रहते हैं जो इंतकाम लेने के आदि होते हैं। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, शरारत का इंतकाम अपनी रुसवाई से न ले। मिल्टन का कौल है, इंतकाम लेने वाला इंतकाम लेने के बाद थोड़ी सी मुद्दत के लिए खुश रहता है, बाद में पछताता है। इंजील मुकद्दस में दर्ज है, इंतकाम ना लो और अपने हम कौम का कीना न रखो। रोजर बेकन ने सिलसिले में वो लिखा है, बदला लेने वाला दुश्मन की सतह पर पहुंचता है और माफ करने वाले का दर्जा और मर्तबा उससे बुलंद होता है। शेख बू अली सीना का कौल है, जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता रहता है उसके जख्म हमेशा ताजा रहते हैं। जुबिनल का कहना है कि इंतकाम हकीर जहनों की हकीर खुशी है। आला खसलत के लोग जज्बा इंतकाम को दिल में जागुजी होने से रोकते हैं। बड़ी नौ इंसान की अजमत और बड़ाई इसी में पोशीदा है कि वो अपने दुख देने वालों और दुश्मनों की ज्यादतियों को दरगुजर करे। इंतकाम गिरी से बाज रहकर हम सब्र तहम्मुल के करीब पहुंचते हैं। सब्र तहम्मुल हमारे ईमान को तकवीत और ताजगी अता करता है। इरशाद रब्बानी है, अगर तुम बदला लो तो उसी कदर जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई हो, तो अगर तुम सब्र करोगे तो यकीनन सब्र करने वालों के हक में बेहतर है।
1: अभी आपने सुना अकबाल जरीन का प्रोग्राम शमी फरोजा। आज का मौजू था इंतकाम। तहरीर जनाब रंजूर तलगामी की थी और रावी थे एसएम शफीक। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव।

1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर पेशो खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ML नकरा की आवाज में सबा जयपुरी और नैयर आसमी का कलाम। बाद अजां मीनू पुरुषोत्तम से आप सुनेंगे फिराक गोरखपुरी और ख्वाजा मीरदर्द का कलाम।

इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम कंट्री वाइड।

0: से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में यह योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है?
1: देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए अगर हम

0: में उठाया, ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए समझाएंगे?
1: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोर मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है वो

0: मेरा जो पानी अगर बच जाएगा तो फिर दूसरी फसल के लिए पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो कुओं से उनका इंस्टॉलेशन होता है इससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह इधर उधर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हनीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एआईबी जिसको बोलता है।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चैनल की बात की थी या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कहा कि जो मैं कहता हूँ प्रिसिशन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप

0: कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जो उनका जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है जो तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरीके की जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो खेती करते हैं उसमें अपने ऊपर बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके। क्योंकि स्कीम अवेलेबल है, उसके भय रहने पर अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज है उनको कैसे हम जोड़े, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहां से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप समाप्त कर रहे हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

लैला मजनू फिल्म का नगमा अपने मोहम्मद रफी, शंकर शंभू, अजीज नाजा और साथियों की आवाजों में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं, समाध फरमाइए। मोहम्मद रफी, मन्ना डे, सुधा मल्होत्रा और साथियों को फिल्म है बरसात की रात।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाजों में अभी आपने दिल ही तो है फिल्म से ये कव्वाली सुनी। आप सुनिए आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों को, फिल्म है वांटेड।
1: निगाह शौक से कह दो हमें सलाम।

0: हमी ने तुमको गुजारा है दिल की राहों से,
1: हमी ने तुमको गुजारा है दिल की राहों से।
0: शोखी

आशा भोसले और मुबारक बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म से ये नगमा। अब सुनिए आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथियों को फिल्म है उस्तादों के उस्ताद।

संगीन कयामत हो। खून जुल्फों में चुने मांग भरी तारों से रंग मिलता।

बैठे हैं मुकाबिल में, अरे बैठे हैं मुकाबिल में, हम तीर नजर।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर।

अमर अकबर एंथनी ये फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों को। इसके साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुनिए गीतों भरी कहानी इंतजार का कर्ब।

हमाद कॉलेज का हीरो था, बेहद स्मार्ट, हैंडसम और जिंदा दिल। दूसरे लफ्जों में दिल फेंक कहा जाए तो बेजाना होगा। हर खूबसूरत लड़की को वो अपनी मिल्कियत समझता था और लड़कियां भी उसकी वजाहत और दौलत से मरूब होकर उसके कुर्ब की मुतलाशी रहती थी। हम्माद उनकी मजबूरी से भरपूर फायदा उठाता, कुछ दिन उनसे मोहब्बत की पेंगे बढ़ाता, दिल भर जाने पर दूसरी की तलाश करता। इस तरह उसकी बेवफाई का जख्म खाकर रोने वाली लड़कियों की एक लंबी कतार थी।

आकर जेबा के जहन में कई खूबसूरत सवाल उभरने लगे। क्या वो जावेद को पसंद करती है? क्या उसकी पसंद सिर्फ पसंद तक ही महदूद है या उससे आगे भी कोई जज्बा है जो आहिस्ता आहिस्ता उसे जावेद के करीब लिए जा रहा है? और उसके तमाम सवालों का एक ही जवाब था कि वो जावेद को चाहने लगी है। ये सोचकर वो शर्मा गई। फिर एक दिन यूं हुआ कि हम्माद ने उसके घर रिश्ता भेज दिया, लेकिन जेबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कॉलेज आकर जेबा ने जावेद को हम्माद की इस हरकत के बारे में बताया। जावेद मजाक के मूड में था, इसलिए उसने बात को मजाक में उड़ा दिया। जेबा गुस्से से पैर पटकती हुई लॉन की तरफ निकल आई और जावेद भी कहकह लगाता हुआ उसके पीछे हो लिया। एक दिन जेबा लॉन से होती हुई अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि हम्माद ने उसका रास्ता रोक लिया। प्लीज जेबा, मेरी एक बात सुन लीजिए, आप बहुत अरसे से मेरा इम्तिहान ले रही हैं। आपने रिश्ते से भी इनकार कर दिया। माना कि मेरी पिछली जिंदगी आलूदा है, लेकिन अब तो मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। जेबा, मैं दिलोजान से आपको चाहने लगा हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। खुदारा मुझ पर रहम खाइए, मैं आपको जिंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जेबा ने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर आपने इनकार किया तो मैं कसम खाता हूँ कि जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा और मेरी जिंदगी आपका इंतजार करते करते गुजर जाएगी। ये कहकर हम्माद तेज तेज कदमों से चला गया। उसने जेबा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि जेबा का जवाब क्या होगा। जेबा हैरान और परेशान उसे जाता हुआ देखती रही। कई दिन से जावेद कॉलेज नहीं आ रहा था, जाने क्या बात है, जेबा सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसके पास जावेद का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, ना ही कभी उसने घर का एड्रेस लिया था, लिहाजा अब इंतजार करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था।

कई दिन बाद जावेद कॉलेज आया तो वो बहुत खुश था। उसने सेबा को बताया कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की सर्विस मिल गई है। ये सुनकर जेबा बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उदास हो गई। अचानक जेबा के चेहरे की उदासी देखकर जावेद ने वजह पूछी तो वो अफसरदगी से बोली कि अब हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। जावेद ने कहा, मुलाकात क्यों नहीं होगी? होगी, बस जरा कम कम होगी। और जरा रुककर बोला, जेबा आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। कैसा वादा? जेबा ने इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखा। यही कि तुम मेरा इंतजार करोगी। जेबा ने इंतजार की हदूद का तायुन करना चाहा तो उसने कहा कि जब तक मेरी दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक। वैसे मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया था, उन्हें हमारी शादी से इनकार नहीं है। जावेद ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। जेबा, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? जेबा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जावेद मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम मुतमईन रहो, मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, और फिर ये तो चंद सालों की बात है। जावेद जेबा का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तशक्कुर भरी आंखों से जेबा की तरफ देखा। जेबा आज मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों जिंदगी में कभी अलग नहीं होंगे इंशाल्लाह। जेबा को इत्मीनान दिलाकर जावेद उससे रुखसत हुआ। उसके बाद जावेद कभी कभी कॉलेज आता। जिस दिन वो कॉलेज आता वो दिन जेबा के लिए ईद का दिन होता। वो दोनों घंटों ढेर सारी बातें करते, खाते पीते और खूबसूरत सपने आंखों में लेकर एक दूसरे से जुदा हो जाते। इस बार जावेद को कॉलेज आए 3 माह का अरसा गुजर गया था। जेबा की आंखें उसकी मुंतजर रहती थी। अचानक एक दिन वो नजर आया। हाँ, वो जावेद ही तो था। नीले रंग की खूबसूरत कार से उतर रहा था। कार से बाहर आकर उसकी निगाहें जेबा को ढूंढने लगी और फिर जेबा उसे सामने खड़ी दिखाई दी तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। वो बहुत बदला हुआ सा लग रहा था, सेहतमंद, स्मार्ट और तवाना। वो जेबा से पहले की तरह मिला। उसकी बातचीत से बला का एतमाद झलक रहा था। उसके हर लफ्ज से फरागत और तमानियत का एहसास हो रहा था। वो मुलाजमत से बहुत मुतमईन था। उसने जेबा को बताया कि उसकी एक बहन की शादी हो गई है और दूसरी बहन का रिश्ता उसके मालिक के भतीजे से तय हुआ है। ये शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। वो बहुत खुश था। उसने जेबा को बताया कि उसकी दोनों बहनों को अच्छे घराने मिले हैं। ये दोनों रिश्ते उसके मालिक ने ही तय कराए हैं। जेबा जावेद की खुशहाली से खुश भी थी और दुखी भी थी। दुखी इसलिए थी कि उसे जावेद के खो जाने का डर था, कहीं जावेद उसकी दस्तरस से निकल न जाए, उसे दूर न हो जाए। ये सोचकर वो बेचैन हो उठी। वो तो अब जावेद के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जेबा ने हिसाब लगाया तो इस बार जावेद से मुलाकात हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका था। वो अपने इम्तिहानात में इतनी मसरूफ थी कि एक टेलीफोन भी नहीं कर सकी थी। अब इम्तिहान से फारिग हुई तो उसने जावेद के ऑफिस में फोन मिलाया, लेकिन जावेद ऑफिस में नहीं था। किसी ने बताया कि साहब साइट पर गए हुए हैं, आप किसी और वक्त फोन कीजिएगा। उसके बाद जेबा ने कई बार फोन किए लेकिन जावेद से बात ना हो सकी। घर का एड्रेस उसके पास था लेकिन घर जाना उसने मुनासिब नहीं समझा। आखिर एक दिन हिम्मत करके वो जावेद के ऑफिस पहुंच गई। जावेद ऑफिस में मौजूद नहीं था। रिसेप्शन पर एक तेज उतर्रार लड़की बैठी हुई थी। जेबा ने उसके पास जाकर जावेद के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने हैरत से जेबा की तरफ देखा और कहा, लगता है मैडम आप साहब की शादी में शरीक नहीं थी। साहब तो कल ही अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए फ्लाई कर गए हैं। जेबा ने बामुश्किल कहा, मेरी बदकिस्मती है, दरअसल मैं कुछ दिनों से बाहर गई हुई थी। ये कहकर जेबा ऑफिस से बाहर निकल आई। उसके पांव मन मन भर के हो गए थे, सर चकरा रहा था। अचानक ऐसी खबर की उसे उम्मीद नहीं थी। एक

पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी थम गई हो। ये एक लम्हा ज़ेबा पर कयामत बनकर गुजरा था। उसकी दुनिया लुट चुकी थी और वो बेखबर थी। उसने लड़खड़ाते कदमों से रिक्शा पकड़ा, घर आकर जब्त के सारे बंद टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। एक समंदर था जो आंखों से बह निकला। आखिर जावेद ने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जावेद ने उससे शादी का जिक्र तक नहीं किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि शादी तक नौबत पहुंच गई और वो इंतजार की शमा जलाए कब से जावेद की मुंतजिर थी। जावेद जिससे उसने अपनी सारी उम्मीदें आरजुएं वाबस्ता कर रखी थी, वो उसे यूं भुलाकर सारे नाते रिश्ते तोड़कर चला जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। इस सदमे ने ज़ेबा को बिस्तर पर लगा दिया और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इंतजार का कर्म सहती रही।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा रईसा परवीन की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी, उनवान था इंतजार का कर्ब। पेशकश थी परवीन सलाम फरीदी की। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए टाकेची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। ईरान के रहबरे आला मुस्तफा खामनेई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शिरकत करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में 27 अफराद मारे गए हैं। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और BCCI ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए टाकेची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तज़किरा किया गया है। दोनों वज़ीरे आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिले मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक़वामे मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीरे आज़म ने दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकल व हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत और जापान ने दो तरफा खसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सुतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तहत अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया। इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली, सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर, अहम मादनियात, इन्फॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। ईरान के रहबरे आला मुस्तफा खामनेई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकजी ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया कि वह अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काडिस की जानिब से यह कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबरे आला मुस्तफा खामनेई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क्यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनई के आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहजीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है, जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और इक्तिसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसानात की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। शाम की राजधानी दमिश्क के एक कैफे में कल एक धमाखेज हरबे के फटने से

0: खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हम मंसब साने तकैची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। ईरान के रहबर आला मुस्तफा खामनेई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूम में शिरकत करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में 27 अफराद मारे गए हैं। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशा खिदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना, फिल्म थी जब जब फूल खिले। प्रोग्राम की अगली पेशकश तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में है, फिल्म है स्कूल मास्टर।

मर्यादा फिल्म का नगमा भी अपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म है हमशक्ल।

0: समय दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। मौजू है कोणार्क टेम्पल।
1: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सूर्य मंदिर की नक्काशी को देखकर फरमाया था कि इंसान की जबान से बढ़कर यहाँ पत्थरों की जबान है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हिंदुस्तान के चंद आजिमुशान मंदिरों में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा सूबे के कोणार्क कस्बे में चंद्रभागा नदी के किनारे वाक़ है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये मंदिर सूर्य देवता से मंसूब है। कोणार्क नाम कोण और अर्क लफ्जों के मेल से वजूद में आया। कोण यानि जाविया और अर्क यानि सूर्य या शम्स। मुकद्दस वेदों के मुताबिक देवताओं के तस्वुर का ताल्लुक नेचर से यानी फितरत से है। इंसान ने अपने वजूद के लिए जिन चीजों को मुफीद जाना उन्हें बतौर देवता पूजना शुरू कर दिया, जैसे कि सूर्य देव। आज भी हिंदू हजरात सुबह के वक्त मशरिक की जानिब देखकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। यह मंदिर कलिंग की तर्ज तामीर का नादिर नमूना है। तारीख के मुताबिक इस मशहूर जमाना मंदिर की तामीर गंग खानदान के राजा नरसिंह देव ने ईसवी सन 1236 से 1264 के दरमियान कराई। मंदिर की तामीर से कुछ पहले दिल्ली के तख्त पर इल्तुतमिश की हुकूमत थी। उसके इंतकाल के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद तख्त नशीन हुआ। उसने अपने एक मोतबर सिपह सालार को बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया। कहा जाता है कि गवर्नर ने उड़ीसा के राजा नरसिंह देव पर हमला किया।

0: जंग में नरसिंह देव को फतह हासिल हुई। जीत की इस खुशी में राजा ने सूर्य मंदिर बनवाया, क्योंकि राजा सूर्य देवता की परस्तिश करता था। मखानी लोग सूर्य देवता को बिरंची नारायण कहकर पुकारते हैं। असलन मंदिर में तीन गुंबद थे, दो गुंबद मुख्तलिफ वजूहों से मुनहदम हो गए, फिलहाल एक गुंबद सही सलामत है। इमारत के बीच एक कुशादा सहन है जो 857 फुट लंबा है और 540 फुट चौड़ा है। इसके जनूबी हिस्से में दो घोड़े हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपना सरकारी निशान बना लिया है। इसमें लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। लोगों का ये यकीन है कि मंदिर के टावर में दो ताकतवर चुंबक लगे हुए हैं जो पत्थरों की चमक में इजाफा करते हैं। मंदिर की पूरी इमारत को 12 जोड़ी पहियों के साथ 7 घोड़े खींच रहे हैं और रथ में सूर्य देवता जलवा अफरोज हैं। ज्योतिष या इल्मे नुजूम से इसका गहरा ताल्लुक है। ज्योतिष के एतबार से सूर्य को तमाम ग्रहों या सितारों का राजा कहा जाता है। इसकी तामीर के इस्तेआराती माने हैं, यानी 12 पहिए साल के 12 महीनों की अलामत हैं और हर पहिए के 8 अरे शबो रोज के 8 पहरों की तरफ इशारा करते हैं। इस मंदिर में सूर्य देव की तीन मूर्तियां मौजूद हैं। पहली मूर्ति 8 फुट की है जो कि तिफली की है, यानी तुलुए आफताब। 9.5 फुट की दूसरी मूर्ति जवानी की है, यानी दोपहर। और 3.5 फुट की तीसरी मूर्ति ढलती उम्र की है, यानी गुरुबे आफताब का वक्त। मंदिर का गर्भगृह यानी मरकजी हुजरा 229 फुट ऊंचा है। मंदिर से मुत्तसिल एक आलीशान नाट्यशाला है। इससे ये मालूम होता है कि यहाँ कदीम जमाने में अदाकारी सिखाई जाती थी और ड्रामे खेले जाते थे। सूर्य देव की असल मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। मंदिर की अंदरूनी व बैरूनी दीवारें संग तराशों के फन का मुजाहिरा करती हैं, गोया पत्थरों में रूह फूंक दी गई हो। इंच इंच पर नबातात, देवी देवताओं, जानवरों, परिंदों और अप्सराओं की नक्काशी की गई है। ये देखकर हैरत होती है कि सिर्फ खास दरवाजे पर 12,000 हाथियों के नक्श उभारे गए हैं। लासानी फन तामीर और इंसानी हुनर की सहरकारी का एतराफ करते हुए यूनेस्को ने 1984 में सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त में शामिल किया है। हम जानते हैं कि बहुत सख्त मुआयने से गुजरने के बाद किसी जगह को ये दर्जा हासिल होता है, इसलिए दुनिया के कोने कोने से आए सैयाहों का यहाँ रोज हुजूम रहता है। आपने देखा होगा कि किताबों और रिसालों में अपनी विरासत के सिंबल के तौर पर लोग इस मंदिर के पहिए के फोटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। सूर्य मंदिर यानि कोणार्क टेम्पल के हवाले से ये प्रोग्राम आपने सुना। पेश कर रहे थे डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा। महीमवीर जी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनिए शान और गायत्री अय्यर को, फिल्म है सलाम नमस्ते।

0: सर
1: नमस्ते फिल्म का नाम आप सुन रहे थे। आवाजें थी शान और गायत्री अय्यर की। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही है अनुभा रोधकी।
2: अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वर्तमान में लगातार अनिश्चित और बदलते वैश्विक माहौल में आप दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्ते को कितना अहम मानते हैं?
3: पिछले 2-3 साल से जो विश्व देख रहा है कि विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध है वो बहुत स्थिर है, बहुत स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है और एक बहुत ही सशक्त नींव के ऊपर ये रिश्ते खड़े हुए हैं। जो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची जी भारत में हैं और ये 16वीं भारत जापान की एनुअल समिट है, जो ये दिखाती है, ये बतलाती है कि 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के 4थे या 5वें जापानी प्रधानमंत्री से बातचीत है, भारत में भी प्रधानमंत्री बदले पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का एक ये बहुत स्ट्रांग केंद्र बिंदु है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ताकायची की मौजूदगी में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
3: इस करार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे
2: जी।
3: तो जो 3 MOUs तो बहुत कई साइन हुए हैं और उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी

0: एक बहुत अहम स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
1: आज की जो ये ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर ताकाई जी की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: अब असल पहल, जैसे भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज एआई की फील्ड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: देखिए, आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है। चाहे वो हम मेट्रो देखें,
1: जी
0: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो
1: जी
0: देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
0: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की खासकर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले,
1: जी
0: ये बहुत ही आवश्यक है और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
0: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं।

0: भी आया करते हैं,
1: जी,
0: और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, चलिए उसको सुनते हैं।
2: You are my beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
0: जी हाँ, बिल्कुल। जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उसके ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, और उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स की हो, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा निर्णय हम दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
1: अम्बेसडर पायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, बायोगैस और जिस तरह भी, चाहे वो तेल हो और रिफाइंड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा, और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस
1: जी,
0: इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
1: जी, जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दोगुना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है, इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
0: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 10 ट्रिलियन येन
1: जी
0: जापान भारत में निवेश करेगा।

0: में, और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है, जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का एंजिन होना चाहिए,
1: जी
0: एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान, तो इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद तो जापान आता है या फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात आजकल कोई भी इकोनॉमी कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती है,
1: बिल्कुल
0: वो सब देशों से, कहीं से आयात होता है कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का, और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई ताकाइची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत नहीं करेंगे। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलिकत पवित्र मार्गरीटा आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में 27 अफराद मारे गए हैं। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई ताकाइची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरक बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई को अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिडेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिले मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार उसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखीर कानून की गिरफ्त में लिया जाएगा। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक़्वामे मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकल हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरक मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैरमकदम किया और अमली तावन बढ़ाने के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों

0: राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेंजुएला में मुतासर लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। भारत ने वेंजुएला के हुक्काम से एक मल्लाह राकेश चौहान के जस्द खाकी की बेहरमती और जिस्म से आजा निकाले जाने के वाकये की तफसीली तहकीकात कराए जाने का मुतालबा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर क्राकस में भारतीय सफारतखाने ने कहा कि वाकया सामने आने के बाद से भारतीय मिशन मुतल्लिका मकामी हुक्काम के साथ इस मामले पर राब्ता कायम की हुई है। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। स्विट्जरलैंड की तरफ से एम्बोला ने खेल के 10वीं मिनट में पहला गोल किया, जबकि वक्फे के बाद एम्बोला ने दूसरा गोल कर दिया। इस तरह स्विट्जरलैंड ने इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच न हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। स्विट्जरलैंड की टीम ग्रुप बी में सरे फहरिस्त रही, उसने 2 मैच जीते जबकि 1 मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। यह मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाले में बैन अक्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालेस स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी चैंपियन टेस्ट शिप 2025-27 का हिस्सा है। आखिर में खास कर रहे हैं एक बार फिर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाई ताकाइची ने हर तरह की दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। ईरान के रहबरे आला मुज्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलिकत पवित्र मार्गरीटा आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में 27 अफराद मारे गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए ताकेची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत पबिता मार्गेटा आयतुल्ला खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में 27 अफराद मारे गए हैं। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 1:15 होने को है। हमारी आज की पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

में ये गाना फिल्म के सबसे बड़े हिट गीतों में शामिल है। स्वतः इस गीत को अपनी आवाज दी थी अलका याग्निक और उदित नारायण ने। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज की महफिल सजी है 1995 की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म राजा के नाम। दोस्तों, इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी बल्कि इसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म राजा का यह है खूबसूरत सफर।

जी हाँ दोस्तों, राजा फिल्म 1995 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण इंद्र कुमार ने किया था। दोस्तों, इसमें माधुरी दीक्षित और संजय कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि परेश रावल, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, रीता भादुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। साथियों, यह फिल्म 2 जून 1995 को रिलीज हुई और व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो वो इस प्रकार थी कि राजा एक साधारण और ईमानदार युवक है। उसकी मुलाकात होती है अमीर परिवार की लड़की मधु से। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन मधु का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ होता है। दोस्तों दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद शुरू होता है संघर्ष, गलतफहमियों और साजिशों का सिलसिला। लेकिन राजा अपने प्यार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है और अंत में हम सभी जानते हैं कि सच्चे प्रेम की जीत होती है।

साथ ही फिल्म की शूटिंग भारत के कई खूबसूरत स्थानों पर की गई थी। फिल्म के रोमांस और संगीत ने इसे पारिवारिक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। दोस्तों, राजा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और सच्चे प्यार की कहानी है। इसकी मधुर धुनें, शानदार अभिनय और भावनात्मक कहानी आज भी इसे यादगार बनाती है।

के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और सुनहरी फिल्म की कहानी, उसके यादगार गीतों और अनसुने किस्सों के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

প্রশাসিত দেশ চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চেম্বারম্যান পারমিনী দাস জেলো অ্যালার্ট জারি কিতা। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया कि भारत में आश्रम नीति पाई वाली निरंतर रही और लचकीले के नवीन पति उपाई वाले विकास से अगले पड़ाव में अगे बढ़ाने चंगी तरह तैयारी।

पार्टी के एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चुना गया की केंद्र सरकार ने पूरे दस्ते के मजबूत प्रबंध की थे। गृहमंत्री ने बाबा बर्फानी के दर्शन की पूजा में यात्रा करने वाले सारे श्रद्धालुओं ने अपना शुभकामनाएं दी थी। पैरादीप इलेक्ट्रॉन पछाण अथॉरिटी UIDAI ने आधार अपराधी से दो हजार मुफ्त ईमेल अपडेट में संगत बनाया। एक कदम पहली जुलाई को 6 महीने की म्याद लिए लागू हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने दसा कि आधार एप मध्य नवी सेवा के दो दिन के अंदर 2 लाख से अधिक लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट किया है।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। पूर्वी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जल्जले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। भारत की महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा आलमी कप में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जनाब मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है।

0: 3880 मीटर ऊंची गुफा के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से होकर जाएंगे। अनंतनाग जिले में ननवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांदरबल जिले में बालसल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की है, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगह, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि यह आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी जोधपुर में नजरसानीशुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। यह प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के मल्होत्रा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पेट्रोकेमिकल, शहरी नकल हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता है। बाद में शाम को वज़ीर-ए-आज़म गुजरात जाएंगे, जहां वो सनंद में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमी कंडक्टर्स के कई पुर्जों की तरतीब और तजीबाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा

0: कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार मजबूत और इख्तियार पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनवो, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनअतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकत दार बनने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मस्नूई जहानत इको निजाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि ये शराकतदारी काबिल एतमाद मस्नूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमायाकारी और तआवुन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दोतरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के नौ मुंतखब अरकान के लिए एक दो रोजा तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दीगर रियासती कानून साज असेंबलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतें इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के लिए कानून साजी के अमल और निजाम की मुकम्मल जानकारी के साथ साथ ये लाजमी है कि वो नई टेक्नोलॉजीज, इख्तिरा, मस्नूई जहानत एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुअसर तरीके से इस्तेमाल करें।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। अब देश दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है, इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमस्ताद के तहत जिले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खजाना ने तिब्बी राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासरा लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेंसी रेड्रिग ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जिलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निजाम से मुतारिफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदऊ करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गुजरात गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बात करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के नौ मुंतखब अरकान के लिए एक दो रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: north of Caracas last week, leaving widespread devastation. In Ukraine, 27 people have been killed and 90 others were injured in massive drone and missile strikes by Russia on capital Kyiv. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's Defense Ministry said in a statement, the deadly bombardment on Wednesday night was in response to Ukraine's long-range strikes on civilian infrastructure. Ukraine's increasingly frequent and large-scale attacks on Russia, described by President Volodymyr Zelensky as a 40-day blitz, have primarily targeted oil refineries, triggering a fuel crisis in Russia, more than 4 years after the war between Kyiv and Moscow began. At least 40 people were killed and 8 others injured after a passenger coach plunged into a deep ravine on the Shirani-Zob highway in Pakistan today. The accident took place in the Danasar area near the border of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. According to the Medical Emergency Response Center, 40 bodies have been recovered from the crash site. The injured have been shifted to the trauma center in Zob for treatment. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh till tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbh. More from our correspondent.
1: According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Gangetic West Bengal, Karnataka, Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Chhattisgarh, coastal Karnataka, East Madhya Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Keralam, Mahi, Uttarakhand and Vidarbha. For the day, the weather agency noted that thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds is likely to prevail over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Rajasthan, Andaman and Nicobar Islands, Gujarat and Jharkhand till tomorrow. Meanwhile, the Met Department has said that Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya will experience hot and humid conditions till Monday. With Sangai Sharan, this is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
0: Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimeters of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihanmumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert. With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and harbour railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
2: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Viksit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Only 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
4: हजारों की तादाद में यात्री समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
4: बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपने पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के

0: मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारक्रस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्ति के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।

0: जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाश में दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त राखी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम सुरों की जादुई दुनिया में उस फनकार की बात करेंगे जिसकी आवाज दिल के तारों को छू लेती है और रूह को खुश कर देती है। इनके गीतों में जीवन के हर रंग, हर भावना और हर ख्वाब दिखाई देते हैं। इनके मधुर गानों की गूंज मन को एक अलग ही सुकून देती है। इनके खून में ही गीत संगीत बसा हुआ है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अमित कुमार जी की। पिता किशोर कुमार की तरह ही अमित कुमार का नाम भी भारतीय संगीत जगत में एक खास स्थान रखता है। अपनी मधुर आवाज और शानदार गानों के माध्यम से इन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। इनके जीवन और करियर की यात्रा बेहद इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। अमित कुमार जी के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जो आज के हमारे कलाकार हैं वो है अमित कुमार। और अभी आप सुन रहे थे इन्हीं की फिल्म से ये गीत, ये फिल्म थी लवर्स। श्रोताओ, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज जो हमारे कलाकार हैं अमित कुमार जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 3 जुलाई 1952 को कोलकाता में किशोर कुमार और रूमा गुहा के घर अमित कुमार जी का जन्म हुआ। पिता की तरह अमित कुमार जी की मां भी एक बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस थी, यानी अमित कुमार को गायकी विरासत में मिली थी। अपने पिता की तरह अमित ने भी कम उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और वो कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह में गाते थे। बाद में पिता किशोर कुमार इन्हें मुंबई ले आए। किशोर कुमार ने अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई दो फिल्में अमित कुमार को एज ए बाल कलाकार के रूप में लिया था। पहली फिल्म थी दूर गगन के छांव में और दूसरी फिल्म दूर का राही के लिए। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने इसमें काम किया। अमित कुमार ने मैं एक पंछी मतवाला गाया, इसमें गाना गाया। इस तरह से अमित कुमार जी के करियर की शुरुआत हुई। आगे आपको इनके और भी सिंगिंग स्टोरीज सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप सुनिए इनके फिल्म तेरी कसम का ये हिट गीत।

सुनाओ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार जी। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं 1970 का जो दशक था वो अमित कुमार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल इन्होंने बॉक्स ऑफिस को कई हिट गाने दिए। 1976 की फिल्म बालिका वधू में इन्होंने संगीतकार आर डी बर्मन का गीत बड़े अच्छे लगते हैं गाया जिसके बाद इन्हें नेशनल फेम मिला। अमित कुमार ने आर डी बर्मन के साथ करीब 170 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए। 1978 में इन्होंने फिल्म कस्मे वादे में आती रहेंगी बहारें गाया। इस गाने में पिता पुत्र की जोड़ी हिट रही। इसके बाद इन्होंने फिल्म चोर के घर चोर ढोंगी आंधी आपके दीवाने खट्टा मीठा गोलमाल और बातों बातों में जैसी फिल्मों में गाना गाया। उस समय के दिग्गज सिंगर्स के बीच अमित कुमार ने अपनी आवाज से एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए आपको सुनाते हैं इनके फिल्म बातों बातों में का ये मेलोडियस सॉन्ग।

0: बोले तुम न मैंने कुछ कहा
1: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन।

जी हाँ श्रोताओं, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, लेकिन आपने बहुत कुछ कहा है और आपके ढेर सारे मेल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम आपका मेल पढ़ेंगे इस सेगमेंट के बाद। श्रोताओं, 70 के दशक के बाद 1980 का दशक जो आया था, जहां फिर अमित कुमार ने अपनी सिंगिंग द्वारा कई हिट गाने दिए। फिल्म कुर्बानी के लिए लैला ओ लैला गाना गाया, जो उस समय बहुत फेमस हुआ। इस दौर में अमित कुमार ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों के साथ गाना गाया। 1981 की फिल्म लव स्टोरी के सभी गाने अमित कुमार ने गाए और लता मंगेशकर के साथ जो गीत था याद आ रही है तेरी याद आ रही है के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता। इस सफलता के बाद

अमित कुमार ने राजेश खन्ना की फिल्म 50-50 और आखिर क्यों के लिए गाना गाए। अमित कुमार ने 1980 के दशक में लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स और एक्टर्स के लिए गाना गाया। इस दौर में वो अपने पिता किशोर कुमार के बाद हिंदी फिल्मों में दूसरे सबसे पसंदीदा मेल वैक सिंगर थे। इतना ही नहीं, 1980 के दशक में के अंत में अमित कुमार ने दूरदर्शन के टीवी सीरियल जैसे चुनौती और कैंपस में भी अपनी आवाज दी। आगे आपको अमित कुमार जी के बारे में और भी रोचक जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए फिल्म लव स्टोरी का ये सुपरहिट सॉन्ग।

पश्चिमी दिल्ली के इंडिपेंडेंस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार जी और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, हम भी आपको याद कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे होंगे अपने मेल्स का कि हम पढ़ें उसको। तो देखिए, मेल्स में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ये है संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर और भारत कमल, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। और ये हैं मारहरा दरवाजा एटा, नबी हसन अब्बासी जी। और आगे चलते हैं ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुलदार और विराज सिंह। और ये हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी। और ये लिखते हैं कि नमस्कार राखी जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हुए हैं। एमएलबी रेडियो ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव और एसपी। और ये है रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी। वीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला। और ये हैं अनिल मोहन जी और ये लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, पहाड़गंज मुल्तानी ढांधा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से शोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरुमंत और गौर मनु। और ये हैं नलवेर महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, नारायण सोपान, आशीष और नारायण सोपान और आशीष जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, एक और मेल लेते हैं। ये है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना जी का। तो हम बात कर रहे थे अमित कुमार जी की। श्रोताओं, अमित कुमार जी 90 के दशक में भी बहुत सारे गानों में अपनी आवाज दी। 1990 में आई फिल्म बागी का गाना कैसा लगता है जबरदस्त हिट हुआ। फिर 1991 में आई फिल्म हम का गाना सनम मेरे सनम भी काफी लोकप्रिय हुआ। 90 के दशक में अमित कुमार ने फिल्म घायल, सैलाब, पुलिस पब्लिक, आज का अर्जुन, 100 डेज जैसी फिल्मों के गानों में अपनी शानदार आवाज दी। अमित कुमार ने 90 के दशक के करीब सभी म्यूजिक डायरेक्टर जैसे जतिन ललित और अनु मलिक जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया। 1994

में आदि बर्मन की मृत्यु के बाद अमित कुमार ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। दरअसल आरडी बर्मन जी के साथ उनका बहुत ही करीबी दिल का रिश्ता था, जिसके बाद उन्होंने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। इस दौरान अमित कुमार ने संगीत एल्बम भी बनाए। अमित कुमार ने सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। अपने पिता किशोर कुमार के डायरेक्शन में बनी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया। अमित कुमार ने फिल्म दूर गगन की छांव में, दूर कराही, बढ़ती का नाम, दाढ़ी, चलती का नाम, जिंदगी और ममता की छांव जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। फिर 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अमित कुमार ने डायरेक्शन का काम संभाला और एक्टिंग को अलविदा कह दिया। कुल मिलाकर अमित कुमार ने अपने करियर को के हर फील्ड में काम किया। अमित कुमार जी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ रीमा गांगुली एक क्लासिकल सिंगर हैं और अमित कुमार जी आज भी रियलिटी शो के जरिए अपने संगीत के फील्ड्स में एक्टिव हैं। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर और सुनते हैं इस खूबसूरत सा गीत अमित कुमार की आवाज में।

हमारे कुछ श्रोताओं के और भी मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। मेगा मेरठ से दिग्दर्शन और कविता का, और ये है एवरग्रीन रेडियो को बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन जी का। आपने पहले भी हमें मेल किया है, और ये है हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, और ये है हमारे साथ शाहजी बोखरे, श्रीमती नंदा हनुमान, उत्तम जी, हिंगोली महाराष्ट्र।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अपने दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके मेलोडी मैटिनीज के कार्यक्रम के साथ।
1: क्या आई है, दिल भाग्य सी क्या।

साथ में आपको बता दें कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ अदाकारा शकीला से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी मरियम काजमी ने। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

रेडियो में भी 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

0: जापान के वजीर आजम सनाई ताकाची अपने कामयाब दौरे के बाद भारत से रवाना हो गई हैं। उन्हें वजीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अलविदा कहा। अपने दौरे में उन्होंने नई दिल्ली में 16वें भारत जापान सालाना समिट में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब मोहतरमा ताकाची ने दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की एक आवाज होकर सख्ती से मसम्मत की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर दहशतगर्दी भी शामिल है। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नौ मुंतखब अरकान के लिए एक दो रोजा तारुफी प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दीगर रियासती कानून साज असम्बलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतों ने इस तकरीब में शिरकत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के लिए कानून साजी के अमल और निजाम की मुकम्मल जानकारी के साथ साथ ये लाजमी है कि वो नई टेक्नोलॉजी इख्तरा मसनू जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मौसर तरीके से इस्तेमाल करें। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजिले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खारजा ने तिब्बी राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासर लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर ने मुल्क में 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। नौजवानों की उम्र के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनअती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनकाद किया। इस कॉन्क्लेव में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई समेत सरकर्दा सनअती तंजीमों ने शिरकत की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकाम पर नुकसान की खबर है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। स्विट्जरलैंड की तरफ से एम्बोलग ने खेल के 10वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि वक्फे के बाद एम्बोय ने दूसरा गोल कर दिया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मधु किया है कि वह विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असम्बली के नौ मुंतखब अरकान के लिए एक दो रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजिले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश महेंद्र कपूर, मनोहर उदास और साधन सरगम की आवाजों में दाता फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: समय ना आपको होगा ना तो याद होगा बूझ मेरा क्या नाम रे नदी किनारे गांव रे। तो ये नदी तो नहीं, हाँ समंदर का किनारा है और मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है वो उसका नाम आपको बूझना पड़ेगा। इससे पहले कि आप बूझे चलिए हम ही बता देते हैं, आज मेरे सामने ही शकीला जी। शकीला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकालकर हमारे सामने से और हमसे बात करने के लिए हमें इजाजत दी। शकीला जी ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपने पहला कदम रखा तो आपकी पहली फिल्म कौन सी?
1: मेरी पहली फिल्म थी कादार साहब की दास्तान, जो 1950 में बनी थी और उसमें मैंने वीना जी का बचपना किया था।
0: अच्छा चाइल्ड आर्टिस्ट टाइम थी आप?
1: जी चाइल्ड आर्टिस्ट, यस। बस वो पहली पिक्चर थी जिसमें राज कपूर और सुरैया जी थी, वीना अल्नासिर जी थे। और उसके बाद फिर मैंने फजली ब्रदर्स की पिक्चर की थी खूबसूरत, जिसमें सुरैया जी हीरोइन थी। और फिर बाद में आर पार और CID, मगर एज ए हीरोइन मैंने काम किया था अलीबाबा 40 शो, जो मेरी पहली कास्टिंग पिक्चर थी
0: महिपाल जी के साथ।
1: और उसके बाद मैंने काफी कास्टिंग पिक्चर में काम किया, दैट वाज मतलब आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट टाइप ऑफ मूवी। और उसके बाद आर पार, CID और पोस्ट बॉक्स 99, सुनिंदर साहब के साथ।
0: आपने देवनंद जी के साथ काम किया, गुरुदत्त साहब के साथ, उनके साथ आर पार में, तो गुरुदत्त साहब
1: आर पार में
0: जी। तो और उस जमाने के ये बहुत मशहूर हीरो हुआ करते थे
1: जी।

0: ना, तो ये दोनों फिल्मों में जब आपने काम किया तो आपको कैसे लगा?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ गुरुदत्त जी, उतने अच्छे डायरेक्टर मेरे ख्याल से शायद ही पैदा हो, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू वर्क इन आर पार्क। तो कैसे ना, यादगार की पिक्चर है वो।

0: सीआईडी में पेट्रोल प्रोडक्ट प्रोडक्शन था, मगर डायरेक्टर थे अपने राज खोसला साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और मैंने तो एक ही पिक्चर में उनके साथ काम किया, आगे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं फिर चली गई थी।
1: उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया,
0: ये हाँ उन्होंने शुरू किया।
1: उसके बाद से उन्होंने कई फिल्में, मेरा साया
0: जी, हाँ जी,
1: साधना जी के साथ।
0: जी जी, मगर नथिंग तो मतलब जैसे गुरुदत्त जी थे और कारदार साहब थे, कारदार साहब तो बहुत ही अच्छे थे, मगर मैंने तो उनके साथ बचपन में छोटा ही काम किया था, मगर आई रियली अडोर, यूज टू अडोर हिम एंड गुरुदत्त जी। और भी मतलब दूसरी पिक्चरों में किया।
1: आप कॉस्ट्यूम फिल्म से निकल के ऐसी मेन स्ट्रीम वाले, ये भी मेन स्ट्रीम ही थी, तो उसमें आ गई, उसके बाद से एकदम से आपने फिल्मी दुनिया को खैर बात कर दिया।
0: खैर एक दिन तो करना ही था, जब एक शादी कर लेते हैं तो दुनिया ही छोड़ के, मतलब मैं इंडिया में नहीं थी, चली गई थी, तो फिर वहां से यहां आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था।
1: लेकिन कोई भी एक्ट्रेस का, खुसूसन एक्ट्रेस का, एकदम पीक पीरियड पे जो उसकी एकदम से पॉपुलैरिटी, क्योंकि सीआईडी बहुत ही कामयाब फिल्म थी, और उस मौके पर छोड़ना, क्योंकि आदमी काम करता है तो फेम के लिए काम करता है, शोहरत के लिए करता है, और वो शोहरत पाने के बाद और पाने की तमन्ना रहती है। लेकिन आपने तो फिर शोहरत पाने का शुरू हुआ था तो आपने छोड़ दिया।
0: हाँ उस वक्त खैर अफसोस तो है, क्योंकि उस वक्त कलर पिक्चरें बननी शुरू हुई थी जब मैंने छोड़ा, और मैं मतलब अच्छा काम कर रही थी, अच्छी पिक्चरें चल रही थी, और उस टाइम मेरी लास्ट पिक्चर ये थी उस्तादों के उस्ताद और चाइना टाउन तो आज भी बहुत मशहूर है, उसके गाने बहुत चलते हैं, और काफी लोगों ने कहा कि आप कीजिए, और मैंने जो मुझे एडवांस वगैरह दिए थे वो भी वापस कर दिए। मैंने सोचा जिंदगी में एक दिन सेटल होना ही है, तो उस ख्याल से मैं छोड़ के चली गई।
1: चाइना टाउन में तो शमी
0: कपूर जी थे, यस, शक्ति सामन डायरेक्टर थे, और काफी अच्छी पिक्चर बनी,
1: बहुत
0: अच्छी। गाने तो आज भी चल रहे हैं
1: जी,
0: और इट वॉज क्वाइट।
1: लेकिन सीआईडी फिल्म के गाने तो जो मशहूर हुए हैं,
0: हाँ सीआईडी फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए, और सीआईडी फिल्म के बनने के बाद जो पिक्चरें बनती थी वो दूसरे तरीके से बनने लगी, उसी तरह से, क्योंकि उसके पहले इस टाइप की पिक्चरें नहीं बनती थी।
1: सस्पेंस,
0: हाँ राइट,
1: एक थ्रिलर थी, और रहीता जी की पहली फिल्म थी,
0: रहीता जी की पहली फिल्म थी।

0: आँखों में।
1: शकीना जी, जब आप हीरोइन थी उस जमाने में हम मैगजीन्स में पढ़ते थे करते थे कि आपकी नंदा जी, वहीदा जी और एक जबीन साहिबा थी, ये चारों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में।
2: आज भी है, हम लोग काफी मजबूत है इस तरह से,
1: माशाल्लाह।
2: हाँ, बहुत अच्छी तरह से वहीदा जी, नंदा, वहीदा मतलब बेंगलोर जाने के बाद थोड़ा दूर हो गई और जबीन भी अमेरिका जाकर सेटल हो गई, तो मतलब और मैं भी यहाँ नहीं थी, मगर अभी वहीदा जी यहाँ आई है और जबीन भी यहाँ आई है, वो अपने लड़के को पेश कर रही है एज ए हीरो दिस इंडस्ट्री। अल्लाह उसको कामयाब करे। और बस मिलते हैं हम लोग, कभी कभी मिलते हैं,
1: यानी आज भी वो दोस्ती सलामत है।
2: सलामत है जी,
1: क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग सब अपनी अपनी तरह की टॉप हीरोइंस थी उस जमाने में, तो आपस में एक तरह की जलसी होती है, कंपटीशन होता है, इसके बावजूद भी आप लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे रही?
2: ये तो पता नहीं, मगर अच्छी दोस्ती रही, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे के लिए इस तरह से नहीं, जब हम मिलते थे तो बस मिलते थे और हम लोगों का जो उस वक्त का माहौल होता था, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। कभी हम लोग खाने पे जाते थे, कभी पिक्चर देखने जाते थे और कभी बैठ के कहीं पर बातें करते रहते थे, मगर ऐसा कभी नहीं था कि ये मुझसे बड़ी है या मैं इससे छोटी हूँ, ये ख्याल कभी नहीं आया, मुझे तो नहीं आया अब तक दूसरों का,
1: यकीनन उनको भी नहीं आया होगा।
3: बिल्कुल नहीं, वहीदा का नेचर ही बिल्कुल अलग है और नंदा जी का भी, शी इज ऑल्सो गुड,
2: और जबीन भी इस तरह के नहीं है।
1: तो आप स्टैब्लिश्ड हीरोइन थी सीआईडी में और वहीदा जी का पहली फिल्म थी
2: जी,
1: तो किस तरह से आपसे उनकी मुलाकात?
2: मेरी वहीदा से, तो सीआईडी में हम काम कर रहे थे और तो उसके बाद एक दिन नंदा के साथ मेरी रास्ते पे मुलाकात हुई और नंदा ने कहा क्यों नहीं हम लोग आपस में सब मिले, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बाहर निकलना एक हीरोइन के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत भीड़ हो जाती थी, तो हम लोग बुरका वगैरह पहन के वहीदा जी के घर पे गए उसको डराने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं और हम लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो दरवाजा खोला और शायद वो लोग पहचान गई उसने, वो खुद ही दरवाजे पे थी, तो उसके बाद हमारी इतनी मजबूत मतलब दोस्ती रही कि हमेशा मिलते रहते हैं, अभी इतना मिलना नहीं होता क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, तो जब भी हम मिलते हैं बहुत प्यार से।
1: और जबीन जी से आपकी मुलाकात कहाँ?
2: जबीन से भी मुलाकात हुई थी, स्टूडियो में कहीं मिले थे और फिर इस तरह से हम लोग ने कहा चलो ये भी अकेली है वो भी अकेले, हम सब मिलके कहीं पिक्चर जाना हो तो ये प्रोग्राम बनाए, कहीं खाने पे जा रहे हैं, कभी ताज में जा रहे हैं, कभी चाइनीज में जा रहे हैं, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो ऐसा होता है।
1: और हीरोज से आप जैसे देव साहब से काम के साथ काम किया, गुरु दत्त जी के साथ, शमी कपूर जी के साथ, इन सब में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ थे?
2: मेरे ख्याल से मैं सभी के साथ कंफर्टेबल थी, सबका अलग अलग तरीका था। राज कपूर जी, श्रीमान सत्यवादी, सभी बहुत अच्छे थे, सभी के साथ मैं कंफर्टेबल हुआ करती।
1: आपने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया?
2: अफसोस है नहीं किया, मगर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और आजकल तो सायरा और ये दिलीप साहब मेरे अपनों से ज्यादा है।
1: अच्छा
2: जी, मेरे अपनों से ज्यादा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ।
1: उस जमाने की हर हीरोइन की ख्वाहिश होती थी कि दिलीप साहब के साथ काम करे, लेकिन बहुत वो खुद फिल्में बहुत कम किया करते थे।
2: हाँ, उनका ये था कि एक तो पहले मैंने पिक्चर जो शुरू की थी, मेरा जो करियर मैंने शुरू किया था कॉस्ट्यूम पिक्चर उनसे किया था, तो लोगों को ये ऑब्जेक्शन था कि ये कॉस्ट्यूम पिक्चर की हीरोइन है, हालांकि कॉस्ट्यूम पिक्चरों में मैं नंबर वन की हुआ करती थी,
1: सही बात,
2: मगर लोगों को ये लगता था कि ये कॉस्ट्यूम पिक्चर की हीरोइन है, ये पिक्चर में मतलब शोशन पिक्चर में कैसे काम करेगी, सबसे मुश्किल बात ये आ जाती थी। ऐसे तो मुमताज ने भी काम किया था कॉस्ट्यूम पिक्चरों में और उसके बाद
1: जी
2: मगर बस मैंने ज्यादा काम नहीं किया, बस यही है कि काफी मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल काम किया मैंने स्टार्टिंग से एंड किया, तो ये इतना वक्त पिक्चर में काम करने के लिए बहुत कम होता है
1: जी,
2: जबकि कलर पिक्चर शुरू हुई थी होने लगी थी और मैंने मतलब जैसे दो चार ऑफर भी मतलब नहीं किए, छोड़ दिए, और पिक्चरें वो सक्सेसफुल हुई, ये सब किस्मत की बात है।
1: आप भी अपनी पीक करियर की पीक पर यानी बिल्कुल ऊंचाई पर ये फिल्मी दुनिया छोड़ी, थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने गलती की?
2: नहीं, आप बिल्कुल नहीं लगा ऐसा, सिर्फ ये लगता था कभी कभी कि चलो पिक्चर में काम करती तो और भी अच्छा था, और भी मैं कितनी ऊंचाई पे जा सकती थी। ऊंचाई पे जाने के बाद भी तो मुझे एक हद तक स्टॉप करना ही पड़ता है, या मुझे करना पड़ता है या मुझे सामने से नहीं मिलता। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी कंटेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो भी है, ये ख्याल तो आता है कि काश मैं मतलब कलर पिक्चर में काम करती, मगर सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ, मगर जितना किस्मत में होता है उतना इंसान को मिलता है।
1: अब आप वापस आ गई हैं, बंबई में रहने लग गई हैं, पहले तो बाहर रहती थी, तो अब देखिए जैसे वहीदा जी हैं, उन्होंने माँ का रोल करना शुरू कर दिया। नंदा जी ने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म में, मजदूर फिल्म में शायद उन्होंने काम किया। आपका जी नहीं चाहता?
2: नहीं, मेरा जी अभी कुछ और ही चाहता है। मैंने अपनी जो फिल्म की जिंदगी थी वो बहुत अच्छी तरह से देखी, बहुत इंजॉय किया, और इस ख्याल से अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे बहुत इज्जत मिली। आज भी जो लोग मुझे देखते हैं, पहचानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे उतनी इज्जत मिलती है जितनी दूसरे लोगों को, जितनी हीरोइन जो काम कर चुकी है, तो उस ख्याल से मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र करती हूँ, मुतमईन हूँ अपने हालात से, अपनी चीजों से। और जितनी भी तरक्की मिले इंसान को कम है, अगर आपको आप ये सोचे कि भाई इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, ये मुझ में नहीं आता है, मैं खुश हूँ।
1: शकीला जी, कभी आपका पाकिस्तान जाने का या वहां के लोगों से मिलने का इत्तेफाक?
2: हमारे पहचान के बहुत है वहां पर, एक तो फजली ब्रदर जिनकी पिक्चरों में मैंने काम किया था, वो लोग यहां से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए, और मेरे ख्याल से उनके आमिर खान जो काम कर रहे हैं उनके रिश्ते में हैं नासिर हुसैन के लोग, तो मेरी जिन्नत से आमिर खान की जो माँ है बचपन से जान पहचान है। और वहां पर मेरे दूर के रिश्ते की कजन रहती है, ये जमीला वकार करके हैं, जो वकार साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो मतलब जाना ही नहीं हुआ। एक दफा मैं गई थी जब जहाज से, तो सिर्फ चंद घंटों के लिए हम रुके थे, और वो भी कहती मुझको आ जाओ एक दिन, तो मेरा जी चाहता है कि मैं जाऊं और देखूं और ये लोगों से मिलूं, बस देखिए क्या होता है।
1: आपने आमिर खान का जिक्र किया, तो आपके जमाने में ये बच्चे तो छोटे छोटे रहे होंगे, तो अब उनको बड़ा देखकर और अपने सामने हीरो देखकर कैसा लगता है?
2: मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं बहुत दुआएं देती हूँ कि अल्लाह उसको और कामयाबी दे, क्योंकि वो मेरे मतलब बचपन की दोस्त के बच्चे हैं। तो ऐसा होता है ना, जो अपने नजदीक के होते हैं उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है कि अल्लाह इनको फलता फूलता रखे। तो छोटा सा था जब मैंने उसको देखा था, मिली थी, अब तो माशाल्लाह वो काफी बड़े हो गए।
1: शकीला जी, आजकल की फिल्मों में जिस तरह के कपड़े हीरोइंस पहनती हैं, और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की गाने और नाच होते हैं, अगर आप आजकल की हीरोइन होती या उस जमाने में इस तरह का माहौल या इस तरह के कपड़े वगैरह होते, तो क्या आप ऐसा करते?
2: उस जमाने में तो लोग पहनते ही नहीं थे ना, खासकर उस जमाने में जो पर्टिकुलर थे, जैसे वहीदा जी थी, वहीदा कहती थी मैं नहीं पहनूंगी स्लीव लेस, और उस जमाने में इस तरह के होते ही नहीं थे हमारे, मतलब कभी गांव का सीन है और घघरा ऊपर चला गया ऐसे डांस करते करते, तो नीचे पूरा चूड़ीदार पहनना पड़ता था, और दुपट्टा अगर हट गया तो सेंसर कट कर देते थे, या गुलाब का फूल आ जाता था। आजकल का जमाना क्या, आजकल सभी जगह ऐसा हो रहा है, ये पिक्चर में नहीं है, या आप कॉलेज जाइए, घरों में देखिए। मैं तो कहती हूँ अच्छे अच्छे शरीफ घरानों के घरों में देखिए आप, लड़कियां इतनी छोटे पहनती हैं, कहती हूँ क्यों पहन रहे, कहते हैं इट इज फैशन, तो आप क्या करेंगे, पिक्चरों में तो वो आता है जो फैशन में, पिक्चरों में जो कुछ आप देख रहे हैं इससे ज्यादा आप कॉलेज में या बाहर देखें ना तो आपको मालूम हो।
1: सही बात
2: है, पिक्चरों में जो दिखाई देता है ऐसा लगता है कि पिक्चर में देख कर बच्चे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है,
1: बल्कि बाहर जो हो रहा है तो देखकर पिक्चरों में
2: भी उसको मतलब आता है उसका।
1: और आजकल की जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, मार धाड़ वायलेंस और कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, तो जब आपने पिक्चर आप पिक्चर चूज करती थी तो क्या सबसे पहले क्या देखती थी
2: स्टोरी? वो उस वक्त पता नहीं, उस वक्त तो ऐसा नहीं होता था जैसा अब हो रहा ना, पिक्चर हम चूज नहीं करते थे, वो आते थे बस पिक्चर में इस टाइप का रोल है ठीक है, इतना पर्टिकुलर नहीं हुआ करते थे लोग जितने आजकल हैं।
1: बहुत से ऐसे हैं फिल्मी दुनिया के सितारे जो अब टेलीविजन की तरफ आ रहे हैं, राजेश खन्ना, तो आपने कभी टेलीविजन पे आने का सोचा सीरियल वगैरह में?
2: बहुत से लोग ऑफर लेकर आते हैं, कहते हैं क्यों नहीं काम करती हो, अच्छी लगती हो, कर सकती हो, मतलब काफी लोग, अब पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ फिर मैं उस दुनिया में वापस जाऊं नहीं, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ ट्रैवलिंग करूँ, ये करूँ, काफी ट्रैवल तो कर चुकी हूँ मगर काफी आना जाना रहता ही है, अगर अब फिर से मैंने शुरू किया बन जाऊंगी और कुछ नहीं,
1: लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप बन जाए ताकि हम फिर से दोबारा आपको पर्दे पर, बड़े पर्दे पर ना सही छोटे पर्दे पर देखें।
2: देखिए जो किस्मत में होता वही होता है, अब तो मैं आजाद पंछी उड़ती रहती हूँ फिर अपने आप को बांध लो कोई चीज, मालूम नहीं शायद कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई मुझे रोल पसंद आ जाए या मैं सोचूं कि मैं कर सकती हूँ या मैं करूँ, इस तरह का मुझे माहौल मिल जाए तो शायद मैं कर भी लूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ। मैं
1: आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, मौसीकी के बारे में जैसे गाने निकले उसके बारे में आपका क्या ख्याल?
2: अब क्या कहूँ, सुनने को अच्छे लगते हैं, बस वो जो पहले का माहौल था जिसमें कुछ वर्ड्स होते थे जो आपके दिल को टच करते थे, ऐसा लगता था कि ये कुछ हमसे करीब है, मगर आजकल के जो गाने देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बस
1: याद नहीं रहते, बोलने
2: याद नहीं रहते मगर वो टच भी नहीं करते, अच्छे लगते हैं, सुन लिया दिल खुश हो गया इस तरह।
1: डांसर्स वगैरह, वहीदा जी तो ट्रेन डांसर, आपने कभी डांस नहीं सीखा?
2: मैंने डांस सीखा ही नहीं किया, मतलब जो डांस मास्टर बताते थे ऐसे ऐसे कर ले, भरतनाट्यम ये सब डांस जो बचपन से सीखते हैं वो अलग बात होती है, मैंने सीखा ही नहीं, मैंने आपसे कहा ना मेरी जिंदगी इस लाइन में बहुत कम अरसे रही और इतने से थोड़े अरसे में आप इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, उसको वक्त लगता है और इस लाइन में रहना पड़ता है।
1: शकीला जी एक फिल्म आई थी हातिम ताई है ना
2: जी,
1: उसमें जयराज जी थे
2: जी,
1: उसमें भी आपने काम किया था, मर्जीना का नहीं, नहीं वो ताली वो
2: उसमें मैं परी बनी थी और वो परी ऐसी थी, वो हातिम ताई की तो एक अलग ही कहानी बन गई क्योंकि लोग समझने लगे मैं छोटी सी परी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स अहमदाबाद से इधर से उधर से आते थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स आकर कहते थे आप ये बच्चों को समझाइए क्योंकि वो कहते हैं कि ये परी हमको कहेगी तो हम आगे पढ़ेंगे। इत्तेफाक देखिए कैसा होता है, और फिर मैं वो बच्चों को समझाती थी, उसमें एक लड़का था जो कुछ 18 साल का था उस टाइम, तो उसने कहा नहीं वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं पढ़ूंगा।
1: अच्छा,
2: तो वो लड़के को लेकर उसके पेरेंट्स आए और दरख्वास्त की कि प्लीज आप इसके साथ एक दो मिनट बात कीजिए, ये तो बीमार हो गया कहीं दरख्त से गिर गया और उसने उसको यकीन हो गया कि परी है और वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं

0: और मुझे बड़ी खुशी होती है कभी कभी ये सोच के कितना अच्छा काम मैंने किया। वो बच्चे से बात की और उसके बाद पता चला कि उसने अपनी मतलब तालीम मुकम्मल कर ली, फिर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अभी कहीं अमेरिका में सेटल है। कभी लेटर लिखा था मुझको कई साल पहले। तो एक तरह का दिल में इस तरह से खुशी होती कि ये परी बन के बहुत बड़ी बात है
1: जी, एक जिंदगी तो सुधरी गई।
0: और खालिद महमूद हैं जो राइटर हैं
1: जी, जी अभी जिन्होंने फिजा बनाई,
0: जी फिजा बनाई, तो उन्होंने मुझे एक दफा, हम वेनिस में फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो उन्होंने मुझे वहां पर कहा, अरे शिकला जी हाउ नाइस टू मीट यू। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मैं छोटा था ना तो मैं आपकी पिक्चर देखता था, कई कई बार देखता था। मैंने कहा क्यों, कहता वो मुझे परी बहुत अच्छी लग रही थी। और उसने बहुत बड़ा सा मुद्दे में उन्होंने अपनी तरफ से आर्टिकल लिखा था, अभी मेरे पास नहीं है, तुमने वो लिखा थी, और वो बहुत खुश हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे सच इतनी वो, कभी आप देखेंगे पिक्चर ना तो आपको लगेगा छोटी सी परी और वो आकर बॉटल में बंद कर देते हैं। तो काफी लोगों ने कई कई बार देखा और मुमताज ये लोग कहते हैं हमने 100 बार देखा। मैंने कहा क्यों, कहते हमने बहुत अच्छी लगी, तो तुम परी बनती हो ना तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। मुमताज और मलका ये लोग से भी मेरे काफी अच्छे ताल्लुक थे, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे रहते थे, तो अभी भी वो मुझे इतनी इज्जत देती है जैसे मैं उनकी कोई बड़ी बहन हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बड़ी बात होती है। और अली बाबा 40 चोर फिल्म जो आई थी उसमें शायद आपने मर्जीना का रोल,
0: मर्जीना का रोल किया था, उसमें डांस किया था, डांस मतलब जो मास्टर बताते हैं उसी तरह का, मगर वो पिक्चर बहुत सक्सेसफुल है,
1: बहुत ज्यादा।
0: और मेरे ख्याल से जितनी कॉस्ट्यूम पिक्चर मैंने काम की है सब सक्सेसफुल है, अफ्रीका में, मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम लोग बहुत होते हैं। तो एक दफा अभी 10 साल मिले थे कुछ पिछले साल, तो मुझे कहने लगे यूसुफ साहब के सामने, कहा अरे शीतला यहाँ तो मैं पोस्ट बॉक्स में काम कर रही थी, तब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा क्यों, कहते कोई मलेशिया से आया था, कोई मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, कौन था पता नहीं, डॉक्टर था, तो उसने कहा मुझे यहाँ मिलना है तो सिर्फ शकीला से मिलना है। तो बोले हमने पूछा आपको शकीला से क्यों मिलना है, बोले हमने उसकी वो पिक्चर देखी है तो हमको उनसे ही मिलना है। मतलब इतने फेमस थे वहां, इंडिया में इतना नहीं था मगर अफ्रीका, मलेशिया और जकार्ता ये सब जगह पे। और वो बोले मुझसे, बोले मुझे किसी और से नहीं मिलना, उसी से मिलना है। और दत्त साहब ने उनको बुलाया, मेरी शूटिंग चल रही थी उनके साथ ही, तो उस वक्त मैं उनसे मिली।
2: बहुत खुशी होती है कि चलो कोई इस तरह से मतलब याद कर लेते हैं।
1: शैला जी आपको कैसा लगता है, जैसे हम जैसे लोग आपको कहते कि हम आपके फैन हैं और आपकी फिल्में देखते थे और आपका काम पसंद करते थे, तो इतने जमाने के बाद इतना एडुलेशन या कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिली खुशी होती है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं और याद रखे हैं। और
1: अपने सुनने वालों को बताइए कुछ पैगाम।
0: बस मेरे सुनने वाले को यही पैगाम है, सबको मेरे तरफ से आदाब, शुक्रिया, और फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी,
1: फिर से बातचीत होगी,
0: बातचीत होगी
1: इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।

जो भी हाँ मेरी इस प्रेम कहानी का।

भाई मेरी गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा।

ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा जा, देख तू जा।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे धर्मवीर फिल्म का नगमा। नगमनी गाते आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गया, जिसे मौसीकी सजाया जतिन ललित ने, फरमाया दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे।

Lidia Tunis. मनाली, महेंद्र कपूर और साथियों को फिल्म है शोर, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से

esperar.

0: बाजीगर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ की आवाज में। नगमगार थे रानी मलिक, मौसीकार अनु मलिक। और अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में शंकर जयकिशन की मौसीकी से जाए नगमा फिल्म में छोटी सी मुलाकात।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे

दादियों फिल्म के अखबार सुन रहे थे मुन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था रोशन ने। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में सुनी कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी सजाया नगमा फिल्म है डॉन।

बबुआ की है बम्बई नगरिया।

के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव इकदार के 73 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं। अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्दमार से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाव करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद भी दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजरों और सरमायाकारों को मदु किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासर वेनेजुएला में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। पाकिस्तान में शराफी जोब शाहरा पर एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने से 40 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जहां मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाव करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और एक नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी और सारी रिवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालसल दोनों रास्तों से शुरू हुई। उम्मीद है कि पूरे भारत से लाखों अकीदतमंद इस 57 रोजा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल होगी जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए नूनवन और बालसल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ हजारों यात्रियों ने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की, जिसके दौरान ये लोग 3,880 मीटर ऊंची गुफा के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से होकर जाएंगे। अनंतनाग जिले में नौवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांधरबल जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें टिड्डी कैंप कायम की जगह, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए हैं ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि आज बाद दोपहर वाली पहुंच जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रूपये की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे

0: स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर में फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानब भारत के सफर में शरीक हों। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तार के तहत जल्जले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए हैं और हजारों अब भी लापता हैं। फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सभी शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समात फरमाओ सवाई की प्रोग्राम झोक माहिती। ए ऑल इंडिया रेडियो दा सराय की प्रोग्राम है। आओ आज दे प्रोग्राम च पहला सुनेंदे हां एक वार्ता कलम दे धनी संत कवि दादू दयाल दा जीवन दर्शन। वार्ताकार हिन अमृत लाल मदान।
3: असा सचमुच वड भागी हां के भारत दी पवित्र धरती ते जन्म गिद्दे से जेड़ी ऋषियां मुनियां भगत कवियां अते संतां दी धरती है। राजनीतिक नजर नाल डिठा मने तां असा सैकड़ा साल विदेशी ताकतां दे गुलाम बने रहे हां, लेकिन सारी धरती दी आत्मा कदे गुलाम नहीं रही, क्योंकि इन्दे विच परमात्मा धर्म अते इंसानियत दी समरसता दे उच्चे सुच्चे गुण मूल अते स्नेह पोशीदा हैं, जेड़े साकू दुनिया दे झमेले खुदगर्जी लुटमार अते टुचेपन तो दूर खुदाई नूर दा दीदार करवेंदे हन। इन वास्ते आदे हैं कि आध्यात्मिक लिहाज नाल भारत सचमुच विश्व गुरु बनन दा हकदार है। सच पुछा वने ता ए जा केड़ा बिया मुल्क है जिथा गुरु नानक संत कबीर गुरु रामानंद संत रैदास नामदेव अते संत दादू दयाल ते महिला संतां विच मीराबाई दयाबाई सहजोबाई जेहे महान संत थी गए, जिना वक्त वक्त ते भारत वासियां दी रूह को रूहानी खुराक दे दे के जरा भी कमजोर नहीं थे दिता। इन ताकत करके ता भारतवासी डट के विदेशी हुक्मराना दा विरोध भी करते रह गए ते उन्हां दे जुल्म भी सहंदे रह गए ते समाजी लिहाज नाल मजबूत भी बने रह गए। संत शब्द दा भाव सत नाल जुड़िया होए, मतलब संत ओ जैकुं सत या सच दा गहरा एहसास थी गया होए ते जाए ईश्वर अते जीवन तत् नाल जुड़ के उच्ची बुलंदियां दी सोच समझ हासिल कर गिदी होवे। उत्ते गिनाए गए प्रमुख संतां ने देश दे भक्ति साहित्य विच 15वीं सदी दे अध विचकार तो लैके 19वीं सदी तक अपना अनमोल योगदान दिता। अज इन वार्ता विच असा राजस्थान दे उगे संत कवि दादू दयाल दे योगदान को याद करे सू ते उन्हां दी भक्ति काव्य रस धारा दा रसपान भी करे सू, या इवें आखो के उन गंगा दी धारा विच इस्नान करे सू। संत दादू दयाल दे जन्म दिहाड़े नाम अते कुल बारे कई अलग अलग मत प्रचलित हैं। वत भी ए मन्या वेंदे के उन्हां दा जन्म अहमदाबाद गुजरात विच सन 1601 या सन 1544 ईस्वी विच नागर ब्राह्मण परिवार विखे होया। कुछ लोग उन्हां को दुनिया मुसलमान भी मनदे हन। इस दी शायद वजह ए है कि

0: सीर के बार बार लगातार कोशिश।
1: ना जपाओ ना कर जपाओ, जिभ्या कहो ना राम, सुमिरन मेरा हरी करे मैं पाया विश्राम। असल विच संत दादू दयाल एक एजे मान संत थी गए जिन्हां ने संसार विच फैले अडंबरा पखंडा रूढ़िया अते धर्म दे नाते प्रपंचा दा डट के विरोध कीता। उन्होंने आत्मा मन ते दिल दी शुद्धि ते जोर दिता ताकि अंदर दी पाक साफ रोशनी विच ईश्वर दे दर्शन थी सकन। हालांकि संत दादू दयाल कोई ज्यादा पढ़े लिखे ना हन, वत भी उन्हां दी वाणी अज भी साकू सच अते धर्म दा रस्ता दिखेंदी है। धर्म भी ओ जेड़ा अज दी तंग दिल फिरका प्रस्ती तो बहु उच्चा उठा होवे अते सहज सुहेला भी होवे। ताई तां उन्हां दे शिष्य परंपरा विच एक प्रमुख संत रजब भी थी गए जेड़े पठान वंश दे मुस्लिम हन अते आमेर विच 20 साल दी उम्र विच उन्हां दे शिष्य बने। बड़ी महत्वपूर्ण गल है कि फतेहपुर सीकरी विच बादशाह अकबर ने उन्हां नाल 40 लिहाड़े सत्संग किया जिने प्रभाव विच उन्हां अपने राज विच गौ हत्या बंद कर दिती। दादू जी दे दूजे प्रमुख शिष्य संत कविदास सुंदरदास ने दादू पंथ को पर ब्रह्म संप्रदाय भी आख्या है जिसका स्थापना काल विद्वान परशुराम चतुर्वेदी सन 1573 सांभर विच मनदे हन। खुद दादू जी दे मुताबिक इन पंथ विच द्वैत भावना दी जरा भी गुंजाइश नहीं ते सारे संप्रदावां वास्ते आपसी भाईचारा समूहिक कल्याण सहनशीलता ते आदर दी भावना है। एहो जिही रूहानी ते समाजी भावनावां दा प्रचार करदे होए महान संत दादू जी सन 1603 विच नारायणा शहर दे श्री दादू पालकां जी बहरान धाम राजस्थान दी थां ते ब्रह्मलीन थी गए।
2: संत कवि दादू दयाल दा जीवन दर्शन हुणे तुसां अमृत लाल मदान दी ए वार्ता सुनदे पए हवे ते हुण पेश है सूफी संगीत।
3: मैं रीना कौल आप सबको राम राम ते नमस्ते करेंदी हां। अज मैं हाजिर हां आप सब दे सामने ओ सूफी संगीत जेड़ी आबिदा प्रवीण जी ने अपनी मिठी मिठी आवाज विच गाया है। मैं मंगती

लाल सखी मेरे कलब दा नारा अली अली मेरे कलब दा नारा अली अली बन जोगन लाल कलंदर दी बन जोगन लाल कलंदर दी एहो कहंदी फिरा मैं गली गली मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच लब मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरे कलब दा नारा अली अली मेरे कलब दा नारा अली अली बन जोगण लाल कलंदर दी बन जोगण लाल कलंदर दी एहो कह

0: Mặt thương nhìn. Ơ mặt thương nhìn.
1: Ai sao chị? Đó sao sao chị?
0: Ôi chà, ôi thù, à đó sư, mẹ tế rè chô đê xa bò rì kì thê à?
1: Ê chô đê xa bò rì tế rù sôi chì cầm pê cầm đê chì?
0: Ôi, ế thê ôn đà bùra kà rù, già lè kè à ôn nù.
1: À chà chì, ê lò chì, à chô đê xa bò rì tế áp bê tù rì ôn đê à?
0: Ôi kà chù nà, ôi, ế kì tù chà kà phì tè mù mà rì bùn à hì hì à? Ôi tò à hà thà nù kì là yà hò yà hì ôi?
2: Pàpà chì xì bà lè kì ê.
0: Kìo? ए प्यो दे से जवाई हो
2: नहीं पापा जी पांडे मांझदा सी
0: जा जाके तैयार हो जा आज तैनू ना कुड़ी आले ने वेखण आउणा है नहा धो ले नवे कपड़े पा ले
2: पापा जी केड़े ओही बदनामी रंग दे पालमा पापा जी
0: ओए देखी किते बदनामी रंग दे पा के किते प्यो दी बदनामी ना करा देई
2: अच्छा पापा जी
0: ओ मक्खन जी ना या पुत ता देता रब ने लामा लाउन वाली गल कीती आ जे किते तीन चार कुड़िया दे देंदा ना वावा दा ज्यादा ना सी
1: वड्डे साहब जी होर पता लगा के छोटे साहब जी भी डोली चेंद वाले आ पर एक गल पूछा जी भाई छोटे साहब राजी ते उम्र ही की आ सिर्फ 16 साल ना हुन ही ना ते हाथ पीले कर देंगे
0: ओ मक्खन जी ओ सोचदा ता मैं भी बहुत आ पर की करा जमाना ही बड़ा खराब आ गया है ओ केड़ा भाई
3: कलोल चंद जी घरे हो
0: नहीं घरों कड़े हुए हैं
3: मैं क्या कलोल चंद जी मैं मखौल चंद
1: हैं आ तो कुड़िया रे आ गया
0: आओ आओ लांग जाओ मखौल चंद जी आओ आ जाओ
3: हम तुम कर साजन आए हम तुम कर साजन आए हम तुम कर साजन आए
1: त्यागनी जी जी सदके आओ जी आओ आओ
4: बेटे योर फादर इन लॉ
5: हेलो फादर इन लॉ
0: है किन्नू फर ले आए
4: फर नहीं ले आ जी तुहाडा हाल चाल पुछ दी
0: अच्छा अच्छा हाल ता अपना ठीक ही है ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ
4: ਠੀਕ ਏ ਹੋਰ ਕਲੋਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ
0: ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਏ
4: ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ
0: ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਏ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ
4: ਕਲੋਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣ ਏ ਨਾ ਲਾਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
0: ਜਿੰਦਾ ਲਾਏ ਹੋ ਨਾ
4: ਆਹੋ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
0: ਗ੍ਰੋਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰੋਹ
4: ਓਹੋ ਆਹ ਗ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੋਹ
0: ਹੈ ਮਖੌਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ

जिस तरह की जो ट्राइकोडर्मा है उस 15 ग्राम प्रति किलो बीज दे नाल लगा के सुधना है ते जो असी इस दी पनीरी लगानी है खेत दे विच उस समय पनीरी दी सोध भी जरूरी है। पनीरी दी सोध करन दे लई 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा नू 1 लीटर पानी दे विच घोल के उस दे विच 6 घंटे दे लई आपां पनीरी नू रख के उस तो बाद उस दे खेत दे विच पनीरी दी लोई करनी है। बासमती दी फसल तो वधारे झाड़ लैण दी उस दी पनीरी दी जिहड़ी उमर है उस दी उमर किन्नी होनी चाहीदी है उस नू खेत दे विच लगाउण दे लई जिन्नियां भी बासमती दीआं किस्मां हन उन्हां सारिआं दी जिहड़ी इक उमर है कि सानू 25 तों 30 दिन दी जिहड़ी पनीरी है खेत दे विच लगा देनी चाहीदी है। जिहड़ी किस्म 1509 है उस दी जिहड़ी पनीरी है सानू 25 दिन दी ही कोशिश करनी चाहीदी कि असीं 25 दिन दी जिहड़ी पनीरी है ओह खेत दे विच लगा दईए। बासमती दे वधिया गुणवत्ता दे चौल लैण दे लई ते उस दा वधेरे झाड़ लैण दे लई इक पनीरी बीजण दा ते पनीरी पुट के लाण दा समां बहुत ही महत्ता रखदा है। जिहड़ी बासमती दीआं किस्मां हुंदीआं हन इह उस समें विसारे ते आउंदीआं हन जदों कि दिन दी लंबाई टुकणी होवे सो इन्हां चीजां नूं ध्यान दे विच रखदे होए यूनिवर्सिटी वल्लों दो समें बासमती दी पनीरी बीजण ते उस नूं खेत विच पुट के लगाउण दे सिफारिश कीते होए हन। जिहड़ी कि किस्म पुस्सा बासमती 1509 है ते इस नूं असीं जुलाई दे पहले पंद्रवाड़े विच खेत विच पुट के लगा सकदे हां। बाकी सारियां बासमती दीआं किस्मां दा जिहड़ा पनीरी पुट के खेत विच लगाउण दा समां है ओह जुलाई दा पहला पंद्रवाड़ा है। जिस तरह कि जिहड़ियां बासमती दीआं किस्मां हन इन्हां दा जिहड़ा कद वखरा वखरा है। जिहड़ी बासमती दी फसल है इह नाइट्रोजन खाद नूं बहुत ज्यादा मन्नदी है जे इस दे विच ज्यादा यूरिया खाद पाई जावे ता इस दा जिहड़ा फुलाट है बहुत ज्यादा हो जांदा है। पौधे बहुत उच्चे हो जांदे हन ते कई बार फसल काफी डिग जांदी है झाड़ भी कट जांदा है ते उस दी जिहड़ी गुणवत्ता है दाणियां दी गुणवत्ता ते भी असर पैंदा है। सो जदों भी असीं खादां दी वरतों करनी है ते बहुत संजम ढंग दे नाल करनी है। खादां दी वरतों दे विच जां तां असीं जैविक खादां वरत सकदे हां ते असीं रसायनिक खादां भी वरत सकदे हां। जैविक खादां दे विच इस तरह है कि जे असीं बासमती दी फसल तों पहलां उस खेत दे विच हरी खाद जिवें कि सण दी होगी ढांचे दी होगी जां मूंगी दीआं जिहड़ी समर मूंग हुंदी आ उस दीआं फलियां तोड़ के उस दे टांगर नूं उस खेत दे विच दवाया जावे तां सानूं बासमती दी फसल नूं यूरिया खाद पाउण दी ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ CSR30 ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ 1509 ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1847 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 54 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 11-21 ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 7 ਹੋਵੇ 17-18 ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 36 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਸੀਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनीष शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: इंडियाज पोजीशन ऑन द इंडस वाटर्स ट्रीटी।
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीसा नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रूपये की अनुशंसा की है। यह 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: Snap Tour.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए, मौसम के अनुसार अपनी सेहत और अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और अभी देख रहे हैं हम कि ऐसा मौसम हो रहा है, कहाँ पे कहीं पे बारिश है, कहीं पे गर्मी है और पसीने नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि तो हम ऐसे पेय पदार्थों को अपने खान पान में शामिल करें जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना हो। अगर हम ऐसे एक ड्रिंक की बात करें तो भाई सफेद पेठा जो होता है ना, वो फाइबर से भरपूर होता है और उसको पीने के बाद आपको एनर्जी भी महसूस होगी, साथ साथ आपका पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ होगा। अगर सुबह खाली पेट आप उसका सेवन करते हैं तो इसके अलावा और भी अधिक आपको मिलेंगे। इसमें फाइबर की मात्रा तो होती ही है, साथ ही साथ इसे कहते हैं कि भाई ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और हानिकारक जो टॉक्सिक होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को हमारे मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ एसिडिटी और अल्सर की समस्या अगर आपको है तो उसमें भी इसके परिणाम बहुत ही बढ़िया देखे गए हैं। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और इसका सेवन करने से हमें इसकी तासीर ठंडी होती है तो हमारे जो शरीर होता है उसमें पेट को हमारे ठंडक मिलती है। और हर तरीके से इसे कहते हैं भाई बहुत ही अच्छा इसको ड्रिंक बताया गया है, तो इसका सेवन आप जरूर कीजिए। इसमें 80% तक पानी ही होता है, इसके जूस का अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका, क्योंकि जो वैज्ञानिकों के भी तथ्य है वो ये है कि स्वास्थ्य और भोजन के बीच अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता तभी तक ही कायम रह सकता है जब हमें ये पता हो कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, खास करके मौसम के अनुसार, क्योंकि मौसमी सब्जी फल जो भी चीजें होती है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। कि मौसम के अनुसार अगर हम फल सब्जी खाते तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बहुत संतुलित रखता है, हमारे जो छोटी मोटी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर जो हमको पता नहीं होती है, हिडन जो गुप्त बीमारियां होती है उनसे लड़ने की शक्ति देता है। हरी सब्जियां हो गई या फल हो गए, उसका जूस है ना, अब जैसे मौसम थोड़ा मिक्स हो गया है, जैसे प्रियंका बहन ने भी बात करी कि अभी मौसम का थोड़ा सा मिला जुला सा है, कभी गर्मी लग रही है कभी बारिश का जैसा लग रहा है, तो ये तापमान जो है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि इससे हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है ना वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है।
0: और भाई गांव की बात करें तो गांव का तो देसी खाना होता है, दूध दही का खाना और रात को गर्म दूध पीते हैं, सुबह लस्सी पीते हैं, तो ऐसा खान पान सादा खान पान होता है। तभी तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो इतनी एनर्जी के साथ अपने खेतों में काम करते हैं और जिस तरह से हमें अपने खान पान का ध्यान रखना होता है वैसे ही जो हमारी फसल है उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कैसे करें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और हमारी लागत भी कम आए, हम जरूरत के अनुसार ही अपने उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इस जानकारी के लिए हम एक बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें जानकारी दे रहे हैं संजय कुलश्रेष्ठ और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, अपनी जमीन से ज्यादा उत्पादन ले सकें इसके लिए आपको कई तरह के प्रबंधन करने पड़ेंगे। अभी खरीफ की फसल की शुरुआत हो चुकी है, कुछ किसान भाई बुआई कर रहे हैं, कुछ भाइयों ने बुआई कर दी है। फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, कार्यकारी निदेशक विपणन है इफ्को में। संजय जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इफ्को किसानों की संस्था है और किसानों के हित में समय समय पर काम करती रहती है।

0: बेहतर किसानों को जागरूक भी करती है। तो किस तरह का आपका अभियान है जिससे कि कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग किसान करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें?
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि इफको जो हमारी किसानों की संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य हर रूप में किसानों की सेवा करना है। जो विश्व की अग्रणी रासायनिक खाद बनाने की संस्था है, वो आज देश के सबसे अच्छे जैव उर्वरक बनाती है, जैव अपघटक बनाती है, नए नए तरह के जैव स्टिमुलेंट्स बनाती है, विदेशों की तकनीक लाकर नए नए प्रकार के आपको वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इफको ने आज हजारों करोड़ रुपया खर्च करके विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी को लाया और अगली पीढ़ी के उर्वरक नैनो फर्टिलाइजर आपके लिए उपलब्ध कराए। इफको प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपया नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई तकनीक को विकसित करने के लिए किसानों के लिए व्यय करती है। इस वर्ष लगभग अप्रैल माह से हमने देशव्यापी अभियान चला रखा है। किसानों के लिए गांव-गांव पर जाकर हमारी सॉइल टेस्टिंग वैन्स जाती हैं, हमारी स्टैटिक लैब्स हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स, फील्ड हमारे सारे क्षेत्र अधिकारी इस विषय में कार्यरत हैं और अधिक से अधिक हमारे मृदा के सैंपल लाए जा रहे हैं और हम उनके आधार पर किसान को उसके जो जो पोषक तत्वों की उसकी भूमि में कमी है उसके आधार पर हम उसे सुझाव दे रहे हैं कि अगली फसल में वो कैसे आगे बढ़े। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो आवश्यकता है वो न तो रासायनिक खादों से पूरी हो सकती है अकेले, न उनके बिना पूरी हो सकती है। यानी हमें अपने देश में हर रूप में ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता है, किसान को इस तरह की समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि वो कार्बनिक, अकार्बनिक, जैव और नैनो चारों प्रकार के जो हमारे उर्वरक हैं उनका सही मात्रा में सही समय पर इस प्रकार उपयोग करे कि जो जो पोषक तत्वों की उसकी भूमि में कमी है वो हम पूरी कर सके। अब जो एकीकृत जो हमने पोषक तत्व प्रबंधन की बात करी, इसका उद्देश्य यह है कि हम आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कर सकें, उपज पैदा कर सकें और हम अपनी भूमि के स्वास्थ्य को भी ऐसा बना के रख सकें कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी हम आवश्यक मात्रा में उत्पादन अपने अनाज का कर सकें। इसके लिए अब हमें करना क्या है, हमें वो सारे चीजों पर ध्यान देना है कि हमें कैसे अपने विगत वर्ष के फसल के अवशेष का हम कैसे प्रबंधन करें। इसके लिए इफको जैसी संस्थाएं जैव अपघटक बनाती हैं और जो बहुत छोटी सी शीशी है जिसमें आधा किलो बेसन, आधा किलो गुड़, 25 किलो पानी में मिला के आप रख दें मार्जिन और उसके बाद उसमें और 150 किलो पानी मिला के एक एकड़ में बिखेर दें, 20-25 दिन में पुरानी फसल का सारा अवशेष जो है हरी खाद में परिवर्तित हो जाएगा और उससे जमीन के भी लाभ होगा और उर्वरक की आवश्यकता भी हमारी कम होगी। इसी तरह से जो दूसरा लाभ है जो हम चाहते हैं कि किसान समझे कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो हमारे जैव उर्वरक हैं, उसमें एनपीके कंसोर्टिया जैसी चीजें हैं जो लगभग 200 रुपए की बोतलें होती हैं सारे संस्थानों की और उससे लगभग 25-25% तीनों तरह की खादें, यूरिया भी, डीएपी भी और पोटाश की खाद भी हमारी बचत होती है। यानी 1500 के लगभग बचत होती है किसान की अगर वो उसका भूमि शोधन में और बीज शोधन में इसका उपयोग कर सके। इसके बाद बात आती है हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स की। जो इफको ने नई जनरेशन के नैनो फर्टिलाइजर्स निकाले हैं, किसान भाइयों, इस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम देश के बारे में सोचें, हमारे देश ने इस वर्ष पहली बार 395 लाख टन से भी ज्यादा यूरिया का उपयोग किया और सरकार की जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही है वो 2.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई, जिसमें से 1,45,000 जैसी सब्सिडी केवल यूरिया पर गई। जी किसान भाई, ये समझें कि अगर वो यूरिया का 100 किलो यूज करते हैं उसमें से लगभग 30 किलो ही उनकी उपज बढ़ाने में काम में आता है तो 70 किलो तो वो यूरिया है जिससे आने वाले वर्ष में और कम उत्पादकता होगी क्योंकि उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति और ज्यादा कम होगी। तो इस तरह से अगर 100 में से 70 किलो यूरिया हमारा खराब है, लाभ नहीं मिला, तो देखा जाए 1,45,000 करोड़ में से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया उस यूरिया पर गया सरकार का व्यय हुआ जिसने हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को और ज्यादा कम किया। और आने वाले वर्षों में ये होता रहेगा कि हम और ज्यादा यूरिया का उपयोग करना पड़ेगा हमें उतना ही उत्पादन लेने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि हमें देश में हम पर कोई और तरीका ही नहीं है, हमें यूरिया का

0: जो उपयोग है वो तो निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, क्योंकि 45 किलो का जो बोरा है उसमें से केवल 14-15 किलो किसान के लाभ का है, 30-31 किलो तो वो है जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को हर आने वाले वर्ष में और कम कर रहा है। किसान को लग सकता है ऐसा कि वो तो 270 या 266 रुपए में मिलता है, पर असल बात तो यह है कि सरकार की सब्सिडी मिला लें तो केवल 700 रुपए का ही उसके लाभ का है, 1400 रुपए का तो वो व्यय है सरकार का उस बोरे पे जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को खराब कर रहा है, हमारे भूजल की खराब करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, और तो और हमारे उत्पाद की ये हालत हो गई है कि तरह तरह की बीमारियां केवल ज्यादा नाइट्रोजन के उपयोग से, ज्यादा यूरिया के उपयोग से आ रही हैं, जिनको हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस यूरिया के बैग में 20 किलो से भी ज्यादा नाइट्रोजन है, क्योंकि 46% इसमें नाइट्रोजन है, और अब मैं अगर नैनो फर्टिलाइजर की बातें इसके सामने लाऊं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देश के लिए एक नया तरह का सुपर फूड है। इस नैनो यूरिया की बोतल में अगर किसान भाई समझे तो केवल 100 ग्राम नाइट्रोजन है, पर तकनीक इतनी बड़ी है कि सतही जो इसके आयतन के मुकाबले वो इतना अधिक गुना भर गया है, जो इसके अंदर जो कण है वो 30 नैनोमीटर के आसपास के साइज के हैं, उसमें जो प्रक्रिया में भाग लेने वाले आइटम होते हैं 50% उसकी सरफेस पर होते हैं, जबकि 3000 जब हो जाता है साइज तो 0.5% भी सरफेस पर नहीं रहता। इतनी ज्यादा क्रियाशीलता होने के कारण ये 100 ग्राम नाइट्रोजन है वो 20 किलो से भी ज्यादा नाइट्रोजन जो बोरे में है उसका बराबरी करता है या उससे भी अधिक हमें फायदा देता है। अब आप समझे किसान भाई कि हम कहते हैं कि जब लगभग 85% लीफ हो जाए तब आप इसका स्प्रे करें, तो ये समझ लीजिए कि जो हम टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यूरिया जितना हम डाल रहे हैं या रासायनिक खाद जितना हम कम उपयोग कर पाएंगे तभी हम उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि हर आने वाले वर्ष में हम जितना यूरिया डाल रहे हैं उससे हम टिकाऊ खेती का एकदम विपरीत कर रहे हैं। और जितनी भी बोरियों को हम अपनी नैनो फर्टिलाइजर की बोतल से बदल पाएंगे या जैव उर्वरक और कार्बनिक खादों के उपयोग से जितना उनको कम कर पाएंगे उपयोग में, उतना ही हम अपनी टिकाऊ खेती की तरफ देश को लेके जाएंगे।
1: बिल्कुल संजय जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी इसलिए दी कि आपने उनको ये भी बता दिया कि भाई कितने बोरे में कितना डालें, कितना हमारा उपयोग है, कितना हमारा नुकसान जमीन के लिए हो रहा है।
0: अगर किसान भाई सोचे नए रूप में कि बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने खेतों में 20-25 एचपी के ट्रैक्टर चलते देखे होंगे अपने जमाने में, और आज हम 45 से 65 एचपी के ट्रैक्टर चलाते हैं, आप सोचें कि जब वो ट्रैक्टर खेत में चलता है तो हमारी जमीन कितनी दबती है। हमारी जमीन में केवल ऊपर ऊपर से ही हम पोषक तत्व ले पा रहे हैं, जमीन इतनी कठोर हो गई है इन रासायनिक खादों के उपयोग से। और सबसे बड़ी बात जो हमने नुकसान उठाया है कि इन सब के कारण जो जीवांश कार्बन है, जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, जीवांश कार्बन है, उसकी मात्रा जो 1 से भी अधिक हुआ करती थी प्रतिशत में, वो अब हमारी 0.3 से भी कम रह गई। किसी प्रदेश में तो 0.1 से 0.2 के आसपास है, राजस्थान उसका उदाहरण है। अब आप सोचें कि जीवांश कार्बन नहीं, यानी जमीन में भुरभुरापन नहीं, जमीन के पानी रोकने की क्षमता कम, और उसके कारण क्योंकि उसमें हमारे छोटे छोटे जीवाश्म नहीं हैं, तो उससे हो ये रहा है कि जो पहले हम केंचुआ सुनते थे किसान भाई, उससे जो जमीन को लाभ होता था वो है ही नहीं, और उसकी वजह से आप कितना भी उर्वरक डालें हमारा उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि किसान भाई पहला जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहली जो खाद डालते हैं, क्योंकि उस समय तक हमारी पत्तियों का आच्छादन उतना अधिक नहीं होता, तो हम ये चाहते हैं कि पहली जो टॉप ड्रेसिंग करें वो जिस मात्रा में जितनी भी यूरिया डालते हैं उतनी डालें, पर उसके बाद जब पत्तियों का आच्छादन 85% से अधिक हो जाए, बहुत सारी फसलें आप देखिए, जैसे हमारी मक्का की फसल है, हमारी कॉटन की फसल है, सब्जियां हैं, जितनी भी इस तरह की फसलें हैं जिनमें पत्तियां ज्यादा हैं, उनके लिए तो ये भरपूर लाभ वाली है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आज एक और मैं बता दूं आपको कि इसमें जब आप किसी भी नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे या नैनो डीएपी को मिला के उसमें जब स्प्रे करेंगे तो आप नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा जो मात्रा अधिक मात्रा डालते थे वो आपने कम कर दी, और नाइट्रोजन की मात्रा जब आपने कम करी और वो सीधे सीधे पत्तियों के माध्यम से अंदर चली गई तो इतनी कम मात्रा थी जो सीधे उपयोग में आई, और उससे ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन पड़ रही थी उसकी वजह से पत्तियां सामान्यतः यूरिया डालते ही मोटी, हरी और रसदार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कीट पतंगे उन पर आते हैं और कीटनाशकों का भरपूर उपयोग करना पड़ता है। हमारे उत्पाद विदेशों से रिजेक्ट होके आ रहे हैं क्योंकि वो उतना स्प्रे वाली मिर्च कोई विदेश हमारा स्वीकार नहीं कर रहा है। हमारे सब्जियों में

0: हमारे फलों पे
1: जी।
0: तो इससे जो विशेष लाभ होगा, जो कम नाइट्रोजन मिलेगा पौधे को, उससे हमारे कीट पतंगों का भी प्रकोप कम होगा और किसान भाइयों का जो व्यय व्यर्थ होता है अधिक कीटनाशकों की स्प्रे करने में, वो भी हमारा कम होगा।
1: और जो किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं उसकी विश्व में भी मांग लगातार बढ़ी रहेगी। हाँ,
0: दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी आप ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इससे एकीकृत पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे, इससे सभी तरह के जब पोषक तत्व होंगे तो हमारा उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत
1: बिल्कुल
0: अलग दिशा में जाएगी। किसान भाइयों का केवल एक ही विषय जिस पे आज मैं अलग से बोलना चाहता हूं आपसे, कि आप सबके मन में ये है कि यूरिया डालते ही 7 दिन में फसल एकदम हरी हो जाती है, पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसको आप 20वें दिन देखिए और उसी के बगल के किसी खेत में नैनो यूरिया डाला हुआ खेत देखिए कि 20वें दिन क्या होता है। क्योंकि किसान गेहूं वाला है, धान वाला है, वो प्रतिदिन अपने खेत में नहीं जाता, पर जो सब्जी उगाता है, जो कैश क्रॉप करता है, जो कमर्शियल क्रॉप करता है, वो रोज जाता है, उसको परिवर्तन दिखता है। मैं आज विशेष बातें बता दूं कि यूरिया डालने से पहले 7 दिन में 6 दिन में फसल हरी तो ज्यादा हो सकती है, पर वो उस जगह जाता है जिसका कि फूल पे या फल पर लाभ नहीं होता। नैनो यूरिया जैसे उत्पाद, नैनो डीएपी जैसे उत्पाद हैं, ये 20 दिन तक धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं और उसी मात्रा में जमीन से भी अन्य उर्वरक के पोषक तत्व आते रहते हैं। यानी ये एक तरह का हर रूप में बैलेंस न्यूट्रिशन की बात होती है, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज की बात होती है, और इसीलिए जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो हमारी अति उत्कृष्ट होती है, सामान्यतः जो हमारी सामान्य यूरिया के मुकाबले। और हम दोबारा ये कहना चाहते हैं कि इफको ने जो इस साल अपना एक विशेष उद्देश्य बनाया कि हम भू स्वास्थ्य पर काम करें और किसान की समृद्धि के लिए समर्पित करें, इसी उद्देश्य से हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम अपने क्षेत्रों में, गांवों में, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर कर रहे हैं इस वर्ष।
1: संजय जी, आपने बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को सही बताया किस तरह अपनी जमीन को बचाना है और भाई कम लागत भी आपको कम करनी है जिससे कि आपका उत्पादन बढ़े और पैसा भी अच्छा मिले। तो संजय कुलश्रेष्ठ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी और विषय था फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे संजय कुलश्रेष्ठ से और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी।
3: भाई उन्होंने भी विशेष रूप से कहा है कि हमें रासायनिक खाद को छोड़कर नैनो फर्टिलाइजर और जैव उर्वरकों की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी खेती को, अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को उसमें सुधार करने के लिए अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और अगर कृषि की बात करें, इस समय खेतों में धान की नर्सरी यदि आपकी 20 से 25 दिन की हो गई है तो तैयार खेत में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 ग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेक्टर की दर से डालें तथा नील हरित शैवाल 1 पैकेट एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा होता है ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। इस तरीके से अगर और आपको कोई बीमारी दिख रही है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि कल शनिवार है और शनिवार को आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है 6:30 पर, जो कि लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम होता है जिसमें आप फोन के जरिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं। तो हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने की, फोन नंबरों की और समय की सही जानकारी दी जाएगी। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं उदयपाल की आवाज में ये उपदेश।

तो भाइयों, उदयपाल के गाए हुए इस उद्देश्य के साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम जी। और कार्यक्रम को आप कैसा पसंद करते हैं, किस तरीके के आपके सुझाव हैं, वो आप हमें प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह कांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ज पर।

अभी आप सुन रहे थे गजल कव्वाली कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। म्यूजिक वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 7:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल कोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं

0: Ferma. मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडी सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोडमैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026 की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 स्वच्छ वायु प्रदूषण नियंत्रण ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और आरसी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अगले 4 वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपए तक और N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सके और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर सभी से संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि ये केवल विशेष दिन तक सीमित न रहे, बल्कि सभी की रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर से निकलते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक थैलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली के निर्माण में सहभागी बने। दिल्ली के भागीरथी जल शोधन संयंत्र में आज स्कूली बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया को करीब से समझा, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास के रोडमैप की समीक्षा की गई।
2: बैठक के दौरान आगामी मास्टर प्लान, नागरिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने तथा शहर के लिए नियोजित समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर व्यापक चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिए कि वे जमीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल

0: करके अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलजुलकर काम करने, पारदर्शी और तकनीक पर आधारित तरीका ही सबसे जरूरी है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: दिल्ली के लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में आज नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फ्रंट ब्लॉक में 6 बेड का डे केयर सेंटर, 12 कंसल्टिंग रूम, एक डे केयर रूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम विकसित किए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत सभी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, ऑनलाइन जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सुविधाओं से देश के हजारों नागरिकों को बेहतर और त्वरित उपचार का लाभ मिलेगा।
2: हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ आईसीयू बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहाँ लेके जा सके। हमने दिल्ली राज्य में सोटो ऑर्गन डोनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ दानदाता और रिसीवर दोनों को कनेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ऑर्गन डोनेशन का काम कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
1: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SRIR प्रक्रिया को लेकर प्रथम समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली भाजपा महामंत्री और SRIR प्रक्रिया प्रमुख योगेन्द्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली में अन्य दलों की तरह ही भाजपा के भी बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 3033 पोलिंग बूथ हैं और इनमें 12,000 से अधिक पर भाजपा के BLA2 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 21 छात्रों को HCL टेक बी नामक निजी कंपनी में अर्न वाइल यू लर्न सीखते हुए कमाने प्रोग्राम के जरिए रोजगार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि यह उपलब्धि सभी छात्रों की क्षमता को दर्शाती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत की समग्र शासन की अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के समन्वय की आवश्यकता है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में दक्ष के तीसरे मैच के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। एक रिपोर्ट।
3: दक्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक वर्षीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जिसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग और लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण से संस्थानों में तालमेल स्थापित होना चाहिए ताकि 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम शासन प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने वर्तमान बैच में महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए इसे भारत के बदलते नेतृत्व परिदृश्य का सकारात्मक प्रतिबिंब बताया। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि आज नेतृत्व विकास का दायरा व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने से कहीं अधिक है जिसमें तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकियों और शासन मॉडल के अनुकूल होने में सक्षम संगठनात्मक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आयोग AI, उभरती प्रौद्योगिकियों और संस्थागत अनुकूल क्षमता जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को अपने क्षमता निर्माण ढांचे में एकीकृत कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल इस साल 8 अक्टूबर से अगले 5 वर्षों तक रहेगा। प्रोफेसर सिंह ने वर्ष 2021 में कुलपति का पद संभाला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों ही श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीकरण नहीं मिल जाता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की इस तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: गांव की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शायद यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से नरेश बागशा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमरनाथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट आस्था और आध्यात्मिक चेतना का जीवन प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बर्फानी की असीम कृपा से सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा मंगलमय और सफल हो। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर एप्पल एप स्टोर से भी हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार करके एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया गया जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर शाम के समय हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने डीडीए सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोड मैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति हुई और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गो से शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम गीत मालिका में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

सवाल का क्या जवाब होगा कि कोई मोहब्बत क्यों करता है, और फिर इसके जवाब में जिसने जवाब दिया वो भी बेमिसाल था। फिल्म दिल चाहता है इसे आपने सुना इस गीत को अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और फिर जब मोहब्बत की बातें होती हैं तो दिन कुछ खास हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि इन दिनों आखिर क्या हो रहा है, कुछ अलग लग रहा है। सुनते हैं गीत में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है।

लाइफ इन मेट्रो फिल्म से आपने सुना इस गीत को, आवाज सोहम की। सुन रहे हैं आप गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीतों में कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जहां वादा बहुत सारा किया जाता है और उसे निभाया भी जाता है। ये गीतों में ही तो बताया जा रहा है और ये गीत ही तो है जो हमें भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। वाकई में वादा करना और फिर उसे निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। और गीतों में जब ये बोल आ जाते हैं तो शब्द पे ज्यादा जोर आता है, यानी कि मन में वही बात चलती है जो गीतों के बोल में होते हैं। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मन को झकझोर देते हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

और जब गानों का सिलसिला चलता है या बातों का सिलसिला चलता है तो कोई एक कहता है और एक सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही अपने जज्बात एक साथ ही बोलने लग जाते हैं तो क्या होता है, फिर तो ये होता है कि कौन कहेगा और कौन सुनेगा। तब ये कह सकते हैं कि कभी मैं कहूं और कभी तुम कहो।

सुनने के बाद जब आती है तो एक दूसरे को मना लेते हैं, लेकिन जब कोई सिर्फ सुनना चाहता हो वो भी तारीफ, तो गीत में इन शब्दों को कैसे फिगराया गया ये गीत बताता है। और तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, और जब कोई खुद से कहे कि बता दो ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या खूबी है, तो फिर गीत कुछ इस तरीके से बन गए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

वाकई में जब तारीफ का वक्त चलता है तो लगता है ये चलता ही रहे, क्योंकि तारीफ सुनने वालों को सबसे ज्यादा इस बात का पता होता है कि जो तारीफ कर रहा है वो तो अपना ही है, और जब अपनी तारीफ करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो मोहब्बत में कई ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर इंसान अपने आप को सबसे महफूज समझता है, और फिर ये दुनिया मोहब्बत पर ही टिकी है। यानी कि अगर इस दुनिया में प्यार मोहब्बत ना हो तो जीवन कैसा ही होगा। तो फिर ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी चलती रहे, यही कामना है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका, मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत मालिका का आखिरी मुकाम आ गया है, यानी कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आखिरी नगमा आपके लिए, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच

0: में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: इंडिया'स पोजीशन ऑन द इंडस वाटर्स ट्रीटी।
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस प्लान का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला की संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनमान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बड़ोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बड़ोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांवद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ।

0: दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। यह पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अवधि स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद में युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। अब एक नजर शब के 1 बजे तक जारी रहने वाली आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरात पर।

रिंग वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम के आगाज में अभी आप समाअत फरमा रहे हैं नक्श लयालपुरी की ये गजल, गजल सरा है भूपेंद्र।

پروگرام کی اگلی پیشکش نسیم اجمیری کی یہ خوبصورت غزل.

सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे भूपिंदर की आवाज में बहादुर शाह जफर का कलाम। जी आप सुनिए कैसरुल जफर की ये गजल। गजल सरा है भूपिंदर।

बाजार में गहरे जामुनी रंग के चमकते हुए जामुन नजर आते हैं तो मुंह में पानी आना यकीन आई यकीन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। इसका हल्का मीठा और हल्का खट्टा जायका हर उम्र के अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नन्हा सा फल सिर्फ जायके में ही नहीं बल्कि गजाइत में भी बेमिसाल है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे जामुन में कौन से ऐसी गजाई अज्जा पाए जाते हैं, यह हमारे जिस्म को किस तरह फायदा पहुंचाता है और किन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद हो सकता है और इसे अपने रोजमर्रा के गजा में शामिल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जामुन में विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। यह गजाई अज्जा उसे एक सेहत बख्श फल बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं हाजमे की। अगर आपको बदहजमी, कब्ज या मैदे की हल्की फुल्की शिकायत रहती है तो मुनासिब मकदार में जामुन खाना फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सेहत को बेहतर बनाने और हाजमे को मुतवाजन रखने में मदद देता है। अब आते हैं जावितीस की तरफ। जामुन को रवायती तौर पर खून में शुगर की सतह को मुतवाजन रखने वाली गजा के तौर पर जाना जाता है। अगर चाहे ये मुतवाजन गजा का हिस्सा बन सकता है लेकिन जावितीस के मरीज अपनी अद्वियात में किसी भी तब्दीली या जामुन के बीजों के सफूप जैसे रवायती नुस्खे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद देते हैं। यह वजह है कि मुदाफियती निजाम को मजबूत रखने में भी माविन समझा जाता है। अगर बात करें दिल की सेहत की तो जामुन में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को मुतवाजन रखने में मददगार साबित हो सकता है, जबकि फाइबर और दीगर गजाई अज्जा मजमूई तौर पर दिल की बेहतरी में मुफीद माना गया है। जामुन जिल्द की सेहत के लिए भी मुफीद माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को तरोताजा रखने और उसकी कुदरती चमक बरकरार रखने में मदद दे सकते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या बैलेंस रखना चाहते हैं तो जामुन एक बेहतरीन इंतखाब है। इसमें कैलोरीज निस्बतन कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है और गैर जरूरी खाने की ख्वाहिश कम हो सकती है। जामुन में मौजूद आयरन जिसमें खून बनाने के अमल में भी माविन होता है, जबकि विटामिन सी आयरन के जज्ब को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। अब एक सवाल है कि जामुन खाने का सही तरीका क्या है, तो ये जान लेते हैं। माहरीन के मुताबिक ताजा और अच्छी तरह धोए हुए जामुन खाना सबसे बेहतर है। अगर जूस बनाए तो उसमें इजाफी चीनी शामिल करने से गुरेज करें ताकि इसकी कुदरती गजाइत बरकरार रह सके। याद रखें हर अच्छी चीज की तरह जामुन भी अतदाल के साथ खाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बाज अफराद में मैदे की तकलीफ का बायस बन सकता है। अगर आप किसी बीमारी में मुबतला हैं या बाकायदगी से कोई दवा का इस्तेमाल करते हैं तो अपने अगजा में नुमाया तब्दीली से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। सामईन ये सिर्फ एक मालूमात है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखियेगा।

0: नाइटिंग न्यूज 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, यूं तो हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात की शुरुआत 1936 से पहले हो चुकी थी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का बाज़ाब्ता क़याम 8 जून 1936 में अमल में आया, जिसके 90 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की शानदार रिवायात रही हैं। मुसीकी का प्रोग्राम हो या नौजवानों का प्रोग्राम, या बराह रास्त कमेंट्री हो या फिर किसी हिंदुस्तानी जबान का अदब हो, सब ने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। इन रिवायात में एक रिवायत आकाशवाणी से नशर होने वाले मुशायरों की भी रही है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों का कलाम यहाँ से नशर किया जाता रहा है। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के स्टूडियो में एक मुशायरे का अहतमाम

0: जमाने थे जमाए, होना था पशेमा ही पशेमान हुआ वो।
1: वाह।
0: होना था पशेमा ही
1: पशेमान हुआ वो,
0: पशेमान हुआ वो, हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। होना था पशेमा पशेमान हुआ वो, और हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए, और हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई।
1: भाई वाह वाह वाह वाह। हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई,
0: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, उसको भी फसाने ही सुनाने थे।
1: वाह वाह वाह।
0: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, और उसको भी फसाने ही सुनाने थे सुनाए।
1: वाह।
0: और फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे। फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे आए, और जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा, जो गैर जरूरी थे बुलाने थे बुलाए। जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा, जो गैर जरूरी थे बुलाने थे बुलाए, रस्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए।
1: वाह वाह वाह।
0: एक दूसरी गजल देखें कि कहा कि मिलने आई थी सलाम करने आई थी।
1: क्या अच्छा मिसरा भाई। वाह वाह वाह वाह।
0: कहा कि मिलने आई थी
1: सलाम करने आई थी,
0: सलाम करने आई थी, जो एक रात शहर में कयाम करने आई थी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: कहा कि मिलने आई थी सलाम करने आई थी, जो एक रात शहर में
1: कयाम करने आई थी,
0: कयाम करने आई थी, और जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का।
1: वाह।
0: जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का, उसे किसी तरह भी वो तमाम करने आई थी।
1: वाह।
0: जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का, उसे किसी तरह भी वो तमाम करने आई थी, और खुला के बीच राह में, खुला के बीच राह में कहीं पे रुक गए थे हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: खुला के बीच राह में कहीं पे रुक गए थे हम, उसी जगह सफर को इख्तिताम करने आई थी।
1: वाह।
0: और वो फड़फड़ा के उड़ गई मोहब्बतों की कैद से। वो फड़फड़ा के उड़ गई मोहब्बतों की कैद से, किसी नए परिंद को गुलाम करने आई थी। और खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई।
1: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई।
0: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई, बचे हुए गमों को मेरे नाम करने आई थी।
1: वाह।
0: खुशी

0: पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच,
1: एक पुल पर हम मिले थे होली
0: एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, रंग था चेहरे पे उसके रोशनी आवाज में।
1: वाह,
0: एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, रंग था चेहरे पे उसके रोशनी आवाज में। धूप और मैं दोनों में है एक आदत मुश्तरक, धूप और मैं
1: दोनों
0: में है एक आदत मुश्तरक,
1: आदत मुश्तरक,
0: धूप और मैं दोनों में है एक आदत मुश्तरक, सुबह के रागों को सुनना शबनमी आवाज में, और सुनने वाले देखने वाले सभी थे दम बखुद, सुनने वाले देखने वाले सभी थे दम बखुद, हुस्न में नशा था और जादूगरी आवाज में, सुनने वाले देखने वाले सभी थे दम बखुद, हुस्न में नशा था और जादूगरी आवाज में, और खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से और वो, खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से और वो छेड़ता जाता था अपनी मनचली आवाज में, खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से और वो छेड़ता जाता था अपनी मनचली आवाज में।
1: बहुत खूब।
0: इतनी सी पहचान लेकर
1: उम्र भर ढूंढा उसे
0: चंद तावीजें गले में दिलबरी आवाज में।
1: वाह।
0: इतनी वा, सी वा, पहचान लेकर उम्र भर ढूंढा उसे चंद तावीजें गले में दिलबरी आवाज में, और जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, सिर्फ मैं पहचानता हूँ बेरुखी आवाज में, जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, सिर्फ मैं पहचानता हूँ बेरुखी आवाज में, ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में।
1: वाह।
0: ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में, और इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में।
1: वाह।
0: इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में, और मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो, मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो, हाँ छलकनी चाहिए इतनी खुशी आवाज में, साथ रो सकते नहीं
1: महसूस
0: ही कर लीजिए दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में, साथ रो सकते नहीं, साथ रो सकते नहीं, महसूस ही कर लीजिए
1: क्या कहने हैं
0: दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में। आखिरी शेर है गजल का कि शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर, शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर, लाख चाहे छुप नहीं पाती नमी आवाज में।
1: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह, एक तारीख बयान कर दी उन्होंने गजल की जबान में जनाब नौमान शौक साहब। आइए अलीगढ़ से एक ऐसे हम शायर को जहमत सुखन देते हैं, इनका ताल्लुक तो रांची झारखंड से है, वहाँ वो प्रोफेसर थे, अब शोबे उर्दू में उनका ट्रांसफर हुआ है अलीगढ़ के। इस्तकबाल कीजिए सरवर साजिद साहब का, प्रोफेसर सरवर साजिद साहब।
2: गजल का मतलब मुलाहजा करें,
1: इरशाद।
2: शौक से आप नई समते सफर में रहिए।
1: आहा, क्या बात है, क्या बात है।
2: शौक से आप
1: नई समते
2: सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद्दे नजर में रहिए। शौक से आप नई समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद्दे नजर में रहिए। शेर देखिए कि दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए।
1: आहा, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह वाह।
2: दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए, उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: तमन्ना है तो आगे बढ़िए, उम्र भर वरना।

0: यूं ही राह गुजर में रहिए, शेर देखिए कि देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते
1: हैं। वाह वाह वाह वाह वाह,
0: देखिए उनकी ये शोखी
1: के कहे जाते हैं,
0: के कहे जाते हैं, हम है साहिल पे खड़े आप भंवर में।
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते हैं,
1: वाह वाह वाह,
0: हम है साहिल पे खड़े आप भंवर में रहिए।
1: वाह,
0: शब गुजर जाएगी झूठी ही कहानी कहिए,
1: क्या बात है क्या बात है,
0: शब गुजर जाएगी झूठी ही कहानी कहिए, ऐसे चुपचाप ना उम्मीदे शहर में रहिए, ऐसे चुपचाप ना उम्मीदे
1: क्या कहने बाबा
0: में रहिए, और इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद,
1: इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद,
0: मेराज यही है साजिद, मोम का जिस्म लिए आग के घर में रहिए,
1: मोम का जिस्म लिए
0: आग, मोम का जिस्म लिए
1: आग
0: के घर में रहिए, शौक से आप नहीं समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद्दे नजर में।
1: वाह वाह वाह,
0: दूसरी गजल का मतलब मुलाहजा करें कि बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए।
1: वाह, बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए,
0: बिछड़े हुओं की फिर से
1: तमन्ना न कीजिए,
0: तमन्ना न कीजिए, बेकार है अब बैठ के रोया
1: वाह वाह वाह,
0: बेकार है अब बैठ के रोया, सिर्फ देखिए कि मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने, मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने, सहरा में गर्क अपना सफीना न कीजिए।
1: वाह वाह वाह,
0: मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने,
1: बहुत खूब बहुत,
0: सहरा में गर्क अपना सफीना न कीजिए, सिर्फ देखिए कि दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं,
1: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं,
0: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं, हर अजनबी परिंद को चाहा न कीजिए, दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं, हर अजनबी परिंद को चाहा न कीजिए, मंजिल की जुस्तुजू है तो यकसुई चाहिए, मंजिल की जुस्तुजू है तो यकसुई चाहिए, हर दो कदम पे रास्ते बदला न कीजिए, हर दो कदम पे रास्ते बदला न कीजिए, शेर देखिए कि वाबस्ता कितनी यादें हैं माजी की आंख से,
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: वाबस्ता कितनी यादें हैं माजी की आंख से, एक मशवरा है आईना देखा न कीजिए,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: एक मशवरा है
1: आईना देखा,
0: आईना देखा,
1: बहुत खूब। मोहतरम सरवर साजिद साहब, आपकी इस शायरी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मुशायरा AIR @90 यानी 90 बरस मुकम्मल होने पर यह मुशायरा मुनक्कद किया गया, बहुत शुक्रिया।
2: सामने अभी आप ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्कद मुशायरा सुन रहे थे, निजामत कर रहे थे जनाब मोइन शादाब। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: सामीन अभी आप मुशायरा समाप्त फरमा रहे थे, शोर इकराम थे जनाब पोपला मेरठी, जनाब आलम खुर्शीद, जनाब नौमान शौक, जनाब सरवर साजिद, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब मोइन शादाब। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। शब के 10:30 हो चुके हैं, ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामिल इरशाद का, मेजबान मोहम्मद इमरान का प्यार भरा आदाब कबूल कीजिए।

मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री। कर्नाटक स्टेट चेन्ना तिरुपति। अच्छा, तिरुपति प्रकाश अपना नाम लिखा है, चेन्ना तिरुपति प्रकाश श्यामाला और अश्वनी आनंद। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और ओम कुमार सुलरकर। सब्जी मंडी बुलढाणा से शबीर हुसैन और सज्जाद हुसैन मुज्जू बाबा। आइए सामने ने सुनते हैं पाकिजा फिल्म से ये प्यारा सा नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई है गुलाम मोहम्मद ने और बोल हैं कमाल अमरूवी के। पसंद आप दोस्तों की। ऊपरकोट मोहल्ला चुकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा। इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी, निशा परवीन और डब्ल्यू अंसारी। पौड़म चेन्नई से शाहिद अली, इफत फारूकी और बेटी हिफ्जा अली। गज्जर हरियाणा से बीटी भाटिया, रीटा भाटिया और जत भाटिया का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए। पुन्ना दर्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल लवंगी वाले, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। जनकपुरी सारनपुर से जॉन डी क्रिस्टो, रोजी डी क्रिस्टो और विलियस डी क्रिस्टो। नूरमहल नैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज, तना जहानाज और फरह जहानाज की ये पसंद। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। रेलवे रोड गंज डुंडवारे से मोहम्मद कलीम जख्मी, नाजमा बेगम नाज और बीबी अमीरा। और इसी नगमे को सुनना चाहे पंचायत बटेरा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा। अब दोस्तों की पसंद आपकी नजर।

आइए दोस्तों, अब सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म से ये दो गाना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं शैलेंद्र, तर्ज बनाई है शंकर जय किशन ने, और मुंतजिर हैं आप सभी दोस्त इस नगमे के लिए। अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और वैदिक फुलमाली। पटनगर मलौट से डॉ रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और आरजू जजोरिया। बलारशाह से प्राची सूरज लोंढे और एकलव्य लोंढे। और कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर और मास्टर उमी भारशंकर। काफी दिनों बाद आपका नाम मिला दोस्त, खुशी हुई। फौरन निजामाबाद तेलंगाना से वहीद रूमानी, डॉ मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी। जिला मुरादाबाद दुर्गापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इरफान। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर और रुद्र गुप्ता। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से कल्पना मदन झा, मानव मैंक 27 निर्मल अपार्टमेंट नरौली फाटक विराट वापी मुंबई गुजरात वापी गुजरात से माफ कीजिएगा। जरूर उरू से बाबा साहब उरुदय, आदिचक्र चंद प्रभाव उरुदय का ईमेल हमें मिला। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और साथ में सीता गीता। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां और मास्टर अजहर खान। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा समीरा और अनस। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और शुभम प्रसाद जायसवाल। सुशांत पिरेजा, मास्टर निवेश कुमार और लड्डू कुमार, टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर नई दिल्ली से। और बुल्डाना महाराज से राजू माठे, श्री गजानंद सलोरकर और सुरेश भीसे पाटिल। महानगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गौंकराही, श्रीमती सरिता गौंकर और अर्जुन गौंकर डुग्गू। विरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता ट्विंकल और उमा गुप्ता। गांव मालहिड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाना हसन और नाजिया इब्राहिम। और इसी नगमे को पसंद किया मुहिनापार जिला बौद्ध छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, कुमारी योगिता और कुमारी गीतिका। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, जैनिश गुजराती, लड्डू कुमारी। तेलंगाना निजामाबाद से शकला बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रही मुन्ना। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेन्द्र नायक, गीता नायक और निहारका सुशांत नायक। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

Ay, Mustafa Sultan, Muhammed Refik Yavazmi, Yapyara Sallakma, Film Şenay Se, Razan Erkeş'in ki bol ko mousiqi se sajaya hai Ravi ne, aur sunne ke mutamanni hai aap sabhi dost. छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राजपाल गजवीय, राधिका गजवीय और कुजागिरी कॉलोनी से राजू मलोदे, माया मलोदे और प्रिया मलोदे, गुजरात गाने ग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी, साई से सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे और इस नगमे को पसंद किया यवतमाल विदर्भ, महाराष्ट्र से संतोष खरसे और विनोद खरसे ने, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन गौर, कविता और करण और करमीर हाउस, जो कैचिया बटन

0: नड्डा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण, चत 5 एमडी पतरौरा तहसील अनूपगढ़ राजस्थान से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशन जनागल और अंकुर जनागल, चमनपुर उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा शबनम और ईसा खातून और नरोत्तम गौर, हिमांशु गौर, यश गौर आप हैं लेक्स सिटी उदयपुर से, गंज डुंडवारा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी और मोहम्मद अयान अंसारी, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमेकर, हर्ष रमेकर और अक्षय रमेकर, गोगामा जिला खरगांव मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री, अस्तुपुरा जिला मुंह से मजहर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जपुरिया और अशोक जाटव, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बुरके, नंदा बुरके और उत्तम दंगाड़े और बाजार रोड मंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा और शबिस्ता मोहम्मद, पांडवज मुल्तानी ढाणा से अनुमान, उषामान और टीलू नायक, उदयपुर से नजीब खान, जब्बार मोहम्मद और अशरफ खान, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण और अंजू श्रीवास्तव का ईमेल हमें मिला, इस नगमे को पसंद करते हैं और दीदार रेडियो लिस्नर क्लब है बिलराम गेट कासगंज से मोहम्मद असलम सैफी, सैबुन निशा बेगम और सद्दाम सोनी।
1: Zulf

करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के जिम्मे में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। यह प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई चार प्रोजेक्टों में शामिल है जिस पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी धीरेन्द्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्त जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहले सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए एशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामे नुक्ते नजर पर मबनी है जिसमें हर रियासत जिला और तिजारती हलके को यकसां तौर पर अहमियत हासिल है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सहाफत को सच्चाई दयानतदारी और आला तरीन पेशेवराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौमे तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए आवाम को बाखबर रखने का काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर आवामी मुबाहिसे की हौसला अफजाई करता है। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की काउंसिल DAC ने दिफाई अफवाज की जंग की तैयारी को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की कैपिटल हसूलियाबी की तजावीज को मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मंजूर शुदा तजावीज फौज बहरिया और फजाइया की हरबाबंदी की सलाहियतों में इजाफा करेंगी। मेटा की एक टीम ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत के हुक्काम के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम्स फीचर के रोल आउट के मामले पर उन्हें समन नोटिस भेजने के बाद हुई। जराय ने बताया कि वजारत के हुक्काम ने इस फीचर से मुतालिक सरकार की तशवीश के बारे में उन्हें आगाह किया। जराय ने मजीद कहा कि यूजर नेम्स फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने के लिए वक्त की हद 3 दिन की दी गई है, इसलिए मेटा मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपना हतमी जवाब पेश करेगा। इसी दौरान जराए ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजारत के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इंस्टाग्राम के उन एड्स के मामले पर मेटा को समन भेजें जिनमें भारत में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के मवाद को फरोग दिया जा रहा है। वजारत इस मामले पर मेटा से वजाहत तलब करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जरात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज एल नीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत एल नीनो की वजह से मुल्क के बाज हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत जरात और तमाम मुतल्लिका वजारतों को चौकस रहने और रियासत हुकूमतों के साथ राबते में रहने के लिए कहा है ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके।
फ्रांस में पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन

बिहार और मीनू मेघ नीलम की जानिब से विदर्भ अकोर से डॉक्टर के संजीव डावे राव, डॉक्टर राशिका डावे राव, डॉक्टर कुस्तुब डावे राव, नसीम रेडियो लिसनर क्लब नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जरुल हक डावर और जालुका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे, शनि मंदिर चौक खंडवा से अनिता सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी और गौरव सैनी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और बोलवा के नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा, राम डोसा निवासा से अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे और आरती लोखंडे। अब दोस्तों का शुक्रिया, आपकी पसंद, आपकी नजर।

मेरे सामने आप सुनते हैं अभय बादल फिल्म से नगमा मुकेश की आवाज में, और इस नगमे को पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। सुनना चाहा है पहले मल्ला से रामचंद्र रावकर, अनु रावकर और रोहित रावकर, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, आप है बेनपट्टी, मधुबनी बिहार से, बिरोड़ी मध्य प्रदेश से, ये हैं हुकुम कर्माकर, सुनीता कुर्माकर और हार्दिक, और कबीर नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभी जुबैर और अंजुमन खान, मथुरा उत्तर प्रदेश से लुमना अंसारी, सभा अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, और ताजमहल से लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, और जनाब ये गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारे से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर अकोट से, विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, गांव पोस्ट हरिपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी, मावलवाड़ी महाराष्ट्र से स्वपन तारे, वसंतराव भोजने और निवृत्ति अडोकर, अच्छा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राकेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा, मंचला रेडियो लिस्नर क्लब अकोला से के शरद पाजपुर, श्रीमती शोभा पाजपुर और बेबी विधि, वर्णाशापुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान और अंकिता अंकित चौहान, खान मंजिल गंजुनवारा से आगा खान आगा, बेगम निदा खान और बीबी अमल खान, और इस नगमे के लिए हम तक ईमेल आया, अमीर खुसरू रोड गंजुनवारा से इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीर हसन और बेगम शबनम अनवार, जेजे कॉलोनी मदनपुर खादर ने दिल्ली से अजहर अहमद अलवी, इशाद अहमद अलवी और सहाना बेगम अलवी, मेरठ कैंट से ये नाम शामिल है दोस्त, बार बार ना करें, और पुरानी बिलायती चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और पूजा पंकी, सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा।

0: आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जापान में रह चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
2: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है वो पहली बार भारत आ रही है और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, तो वो भी एक अपनी विशेषता रखती है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अमरीका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया। और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में, तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहां बहुत सारे संसाधन है, वहां बहुत सारे महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं सागरी रिसोर्स।
1: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
3: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण हैं।

0: विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के तीन बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है। तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
2: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, यह भी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें एआई से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, से बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूं कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो रही तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य, उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो 10 पन्नों तक चला जाता है।
1: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमीकंडक्टर का भी काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया। हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं। तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं।
2: बिल्कुल ले जा रहे हैं कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पे है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है, इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है, बड़े पैमाने पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में, इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
1: जापान के प्रधानमंत्री सराय ताकाइशी ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना चाहिए। अगर ट्रेन की बात की तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी कई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये
2: बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, जैसा कि मैंने कहा व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा, एआई के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
1: उसमें एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस में छिड़का है, नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है, भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है, भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही है भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी

0: उनका होगी। बिल्कुल ऐसे हमारे लिए हॉर्मोन्स का जो कंफ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए। उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है। तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो मुद्दा उठा है उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। ये मैं समझता हूँ कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैम्पिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
1: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं। क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें, या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें, ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई है उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं
0: भारत और जापान? मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट दर्शाता है किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको विश्व में शांति और समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का। हालांकि हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती है?
0: देखिए जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से, तो जापान अच्छे से इससे उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहां विकास कम है वहां जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दे, तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहां से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी के ट्रेंड मैन पावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
1: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इससे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
0: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी और आज भी उसमें काफी असंघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है, इंटरेस्ट जो है वो एक इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं।
1: गणेश जी अक्सर जब इस तरह के समझौतों के स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पर दोनों देशों के जो नागरिक है उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
0: सातवीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था और बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके तिब्बत, चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राजा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें लाद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। मिले, बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुनी हो, जहाँ पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जो राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझे तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
0: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था, और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मोहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना के रखें।
1: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा भी तय करेगा?
0: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब है। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना यह अपने आप में बहुत विशेष बात है।
1: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। वक्त हो चुका है कव्वालियों का, तो लीजिए सुनिए जाफर हुसैन निजामी कव्वाल और साथियों से कव्वालियां।

माँ देवी की थी, भगवान गणेश की बदायूं ने तर्ज बनाई थी नौशाद ने। जब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, फिल्म है बदायूं। शकील बदायूनी के बोल को मौसीकी से सजाया है नौशाद ने।

आप सुन रहे थे बावली फिल्म से ये दो गाना शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी थी नौशाद ने, लीजिए सुनी मुकेश का गाया हुआ ये प्यारा सा नगमा। फिल्म है अनोखी अदा, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकार नौशाद।

में वजीर आजम सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तिजारती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई चार प्रोजेक्टों में शामिल है, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमाकारी की गई है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुद्रेन्द्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्त जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्याकर्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबोर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई दयानतदारी और आला तरीन पेशेवराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए आवाम को बाखबर रखने का काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर आवामी मुबाहिसे की हौसला अफजाई करता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जरात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल अलमीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और उसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलमीनो की वजह से मुल्क के बाज हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत जरात और तमाम मुतालिका वजारतों को चौकस रहने और रियासती हुकूमत के साथ राबते में रहने के लिए कहा, ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंचायत राज की वजारत ने 16वीं मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादले ख्याल करने की गर्ज से कल नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनकार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वीं मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स को तजवीज दी है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का अहाता किया गया है। हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से BATBMS एपॉक आयोन और लॉसीजी एप्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। ये इकदाम सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। ये कदम इन इल्जाम के बाद उठाया गया है कि इन एप्लीकेशन को ई रिक्शा समेत ई व्हीकल्स को रिमोट के जरिए नाकाबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई है। ये तादाद गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिससे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का अंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि ये आदादोशुमार नामुकम्मल है और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तिलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं।
نیٹا کی ایک ٹیم نے کل الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی. یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیم فیچرز کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں

पुराने गीत सुन रहे हैं गोल्डन एरा के फिल्म संगीत आप यानी कि पूजा भारती के साथ आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। अभी आपने जिस गीत को सुना फिल्म दास्तान म्यूजिक से सोनिया के स्वर में गीतों का एक पिटारा पुराने जमानों के गीतों के एक पिटारा जो कभी भी धूमिल नहीं हो सकता उन गीतों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनते हैं उन्हीं में से एक ये गीत।

तद के स्वर में आपने फिल्म बाजी से सुना इस गीत को, बहुत ही खूबसूरत गीत है और इसे अगर सही से सुना जाए तो इसके बीच के बोल भी बहुत खूबसूरत है। फिलहाल अग्नि गाने की ओर चलते हैं।

अर्शाद बेगम के सॉन्ग में आपने इसकी जो सुना फिल्म भाई बहन से, ये तो सिलसिला जारी है। आप सुन रहे हैं और जुड़े हैं AIR यानी कि आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 से। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। श्रोताओं, पुराने गीतों का सफर चल रहा है, यह सुरों का सफरनामा। सुनहरे गीत गोल्डन एरा के गीत हैं, तो गोल्डन एरा के गीत में अगर हम शमशाद बेगम को सुनते हैं तो फिर हम गीता दत्त को भी सुनते हैं और साथ ही साथ लता मंगेशकर को कैसे भूल सकते हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने बाबुल फिल्म से ये गीत सुना। गीतों का सिलसिला चला जा रहा है अनवरत लगातार, और गीत जब सुनहरे हो तो उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। जी हाँ, पुराने गीतों के शब्द और उसके जो लिरिक्स हैं और गाने का जो तरीका है और जो धुन है, क्या क्या गिनवाए, सब कुछ अत्यधिक खूबसूरत सुनहरे। शायद यही कारण है वो सुनहरे गीत आज भी हमारे मनों में, हमारे दिलों में यूं ही ताजा और सुनहरे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना बेकसूर फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर हो या शमशाद बेगम हो या गीता दत्त हो या फिर मुकेश हो या फिर मोहम्मद रफी, उस जमाने के ये सारे हिट सिंगर हैं जो आज भी हिट हैं हमारे दिलों में। आज भी राज इनका ही चलता है गीतों के मामले में। कितना भी गीत आप क्यों न सुन ले, लेकिन सुनहरे गीत पुराने गीत जब तक कानों में नहीं पहुंचते, कान अधूरा सा फील करता है, अधूरा सा महसूस करता है। तो आइए सुनहरे गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

अरुण कुमार के इस स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म मशाल से। श्रोताओ, अरुण कुमार नाम हमने या आपने कभी ही शायद सुना होगा, लेकिन गीतों को जब उन्होंने गुनगुनाया तो गीत खूबसूरत लगे। तभी तो उसे कहते हैं कि गोल्डन एरा के गीत गाना बहुत कम समय में उसे सीखना या उसके सुर अलापना सबके बस का नहीं है। गीतों के सफर को चलिए जारी रखते हैं और अगला गीत सुनते हैं।

छिंदवाड़ा से मुकेश की आवाज में आपने इस गीत को सुना। गीतों का सिलसिला चलिए आगे बढ़ाते हैं। और सुनहरे गीतों में कुछ गायक ऐसे थे जो लगातार छाए थे उस जमाने में, उनमें से सबसे पहला नाम आता है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने फिल्म मल्हार से इस गीत को सुना। सुन रहे हैं आप सुनहरे गीत गोल्डन एरा के फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती।

कौन सा गीत कैसे साजेगा, कैसे खूबसूरत बन सकेगा। उन्हीं कलाकारों में से एक लता मंगेशकर और दूसरी मोहम्मद रफी। आइए सुनते हैं इनके सुर में ये गीत।

लता मंगेशकर और चितलकर और साथियों की आवाज में आप सुना इस गीत को फिल्म अलबेला से। भोली सूरत दिल के खूटे मौत के गीत लाजवाब होते थे। हर एक शब्दों के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में बताया गया पुराने गीतों में। तभी सुनहरे गीत आज भी हम पसंद करते हैं। गीतों का सिलसिला जब चलता है तो उसे रोकना थामना उससे बढ़िया है कि उसे आगे बढ़ाना। जी हाँ, गीतों का सिलसिला कुछ यूं ही लेकर आता है मनों को, आपके दिलों को तरोताजा करने। सुनते हैं अगला गीत, सुनहरे गीत।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना इस गीत को, सदाबहार स्वर, हर एक गीतों में ढलने वाला स्वर, चाहे वो पुराने गीत हो या नए गीत हो, हर गीतों में लता मंगेशकर ने अपना जादू, अपना सुरों का जादू बिखेरा। आइए सुनते हैं बहुत सुनहरे का अगला गीत।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

0: किया था शंकर जयकिशन ने। धुन से भी समझ में आ जाता है कि किसने धुन दी। जैसे गीतों के हर एक गीत में जब हम म्यूजिक डायरेक्टर की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि इस गीत में कुछ आवाज अलग से हटकर है, जो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता था, अपने गीतों को अपने हिसाब से संवारना। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनहरे गीत से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक, आईआईएन और वासगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ

जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसाटकिना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1-6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1-6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: वो तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें पकड़ने यही आ रही है?
1: ये हो नहीं सकता।
2: मुनी को तो कुछ भी हो सकता है।

0: कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3 बजे को है, आप कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सारण जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रूपये की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट BMS इपोक IIN और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के अर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशूर ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डी से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Has reiterated that the Indus Waters Treaty IWT remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs Randeep Jaiswal said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods export to rise from about $440 billion to around $530 billion, and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat today. In Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the terminal building of Jodhpur Airport and launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, he will travel the Baltro to dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1,06 crore rupees in petrochemicals, urban transport, renewable energy and power transmission. During Gujarat visit today, in a major boost to the India Semiconductor Mission, the Prime Minister will inaugurate the CG Semi outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Roland Lescure yesterday co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence in France. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed the prospects for future projects. The ministers have pledged to use the Economic and Financial Dialogue as the main platform for addressing economic, financial, technological, investment and trade matters between India and France. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said that India endured the closure of Hormuz without any shortages anywhere in the country. Sharing his thoughts in a blog, Mr. Puri said that today stocks are full, pumps are open and the Indian consumers has paid less for energy through this crisis than any other consumer in the world. The minister said that at the peak of war, when no vessel was moving out of Hormuz, over 12 Indian LPG vessels were quietly moved out of Hormuz without paying any tolls, which is the largest number for any country. Mr. Puri said that during the crisis, the country's crude basket widened from 27 countries to 41 and the import terminals doubled. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized as of yesterday. According to Office of Chief Electoral Office of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of special intensive revision of electoral rolls in Delhi. As part of the exercise, over 13,000 booth level officers will visit every household till 29th of this month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Now to the sports. In the FIFA World Cup, Egypt advanced to the round of 16, defeating Australia 4-2 in a dramatic penalty shootout at Arlington in US. Australia and Egypt are tied 1-1 after 90 minutes scheduled time and goalless 30 minutes extra time. Egypt took the lead in the first half as Imam Ashour scored in the 13th minute. Australia equalized in the second half as Egypt defender Mohamed Hani scored a calamitous own goal. Egypt scripted
2: history by winning first World Cup knockout stage match in 92 years. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens at 3:30 a.m. while

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सनेगान रूप में।

हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुना रहे हैं जिसे स्वर दिया है महाराजा परम संतानम में।

अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे उषा विजय कुमार की प्रस्तुति, राग है चारुकेशी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आपने उषा विजय कुमार द्वारा घोटू वाद्यम पर बजाया राग चारू केशी सुना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे बद्ध पद्मनासन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देश भक्ति गीत का। पर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का आनंद लेंगे, जिसमें आज के कलाकार हैं राधिका मोहन मोत्रा, जो सरोद पर हमीरी बिलावल राग बजाएंगे। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05। 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन, जबकि 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का। 6:55 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जबकि 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अब सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: धर्म नहीं हारे आम सिक्की के सास वसना बाही तना दी कमाई दान।

Bye.

हमारे गुर के चरण के संग चारे गुर के चरण के संग चारे गुर के

जागरे मन जागन हारे।

दया कृपा संतोख सूत जब गली सतवट एहो जनेओ जी काहे ता भांडे कट ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सुमन।

उड़ी राज पार बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानकपुर रहे परपूर मथे टेका टेका टोटी का खाई हाथ छुड़ी जग साई नील वस्त्र पहनो प्राण में स्थान ले पूजा प्राण अपा क्या का कुआ बकरा खाना चौके ऊपर किसना जाना टेके चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत मत मत बे मत मत एहो अन्न असदा दत्त तन पिते पेड़ करे मन झूठे चली परे तो नानक सत्य आये सच हो वैसा सच पाये थोड़ी चित्त अंदर सब को देखना तेरी खेत चलाए ना अपने बढ़िया आपे ही कर्म कराए ना वो बना बन में दी सिरे सिरे अंधे लाए ना नजर तुझे करे सुल्ताना ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਣਾ।

I'm

ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਕਰ ਪੈਂਦਾ।